ताबीरे अथोपम गोपेश्वर सिंह खोबासी आकाशवाणी इम्फाल हौजिक अयु की पुनिपाल तारक मिकुप खर की दिल्ली रिलेद समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज शिलोंग रिलेद अवांग नोंपोक लमदम की पाव सिंह मथंग मथंग ताब फूंगीरगनी मिकुप खर दंगाई मीनसी।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा संपन्न। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए, ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोसकोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
3: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक

0: नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित एपीएमसी सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया

0: जनता से विचार विमर्श किया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: पहले दिन समिति ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों, राज्य निर्वाचन आयोग तथा गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों, राज्य निर्वाचन आयोग तथा गोवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। दूसरे और अंतिम दिन कल समिति ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकर, विपक्ष के नेता यूरिया लेमाव तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों से चर्चा की। इससे पहले समिति के अध्यक्ष और सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, चुनावी खर्च कम होगा और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले प्रशासनिक व्यवधान में कमी आएगी। समिति अब अपने राष्ट्रव्यापी परामर्श अभियान के अगले चरण में लखनऊ का दौरा करेगी। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकवोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकवोक द्वीप के पास रट नगोवाई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश

मखल मथिल गे थरुम क्या संदोक्त ने तहन जरी बासी आकाशवाणी इम्फाल गे FM संगाई चैनल दिगिनी हौजिक पोंपा मसीदा पुजरकली तोंगान तोंगान बा सेसक पसिंग दिगी मणिपुरी फिल्मी सेसिंग खुदल गे हन बदे तामी नसी हेरो फिल्म सिदिगी रतनमदी सदानंदा अनिगे पुनब खोंजल दा तोंबी नमायरकपम ना सैरिंग बा मदी गोपी ने सैरांग बिशैनी नुंगशिब मरुपका पुन्ना सानमिन बवारी पुन पांथोमिनब थबक अदुकी मतिक नुंगाई थबक सुमाई पाकी अवाब मसखंगदी हाइबदुनी इसाई खुदोल तमजरी तामिनसी

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो लेडीज
1: मातम
0: तनाम नोकचरी।
1: हा
0: हेलो लेडीज ता गुड मॉर्निंग मणिपुर लोर मतुंग द संडे ने ना। हेलो लेडीज से अखगी नुमि जोंबा मामांग द फांगथोक जबा अदन गुड मॉर्निंग।
1: बोलिंग सा आई हम तक कदी अदिराती सुरे
0: फांगी से
1: पांगई देगी पांगई थमोलम पाक देगी प्रमो
0: पांगई देगी प्रमो ममांग द फंगबी बदी। हेलो लेडीज गुड आफ्टरनून लेडीज तो ओबी ब्रा नत्र इसै खनबगी थोरम द ओबी गी ब्रा
1: गुड आफ्टरनून लेडीज तर
0: अदि दिङ असि से नोमाइ जिंग से पुंगफम सिगि मतुङ इनदि चा इसिंग दि उन बिर म दगो माली करी मथेल हाउ बिख्रो ब
1: सा चक सा जरे
0: करी मथेल
1: इरोन कांगो ब
0: इरोन बम कांगो उमगा नोंसिंग की फिबम दिखितंग पांगे माके जो जिसे तुम चूबरा कितंग नसी से
1: नसी दी अदों से पे पे अदों तार
0: करी करम बा वफम तापी गनी नसी दी
1: वफम दी आई दी थोड़ो न वो दी हाजिंग आ लाइक दे दो तुम लुक दी की चाय तो वो जी सुपा हम दे बा नसी जी ना अगी रख सुपुई रे
0: ट्राई दी ट्राई दी थोरम लाई खुदिंगे पुंगफम खुदिंगे दुम ट्राई तो बनी फंग दे तापी बनी बनत्रा नहांगे फंगबा मियो सिंग दन हुजि अमु फंग मोय दनि हाइजरि बा हुजि फोन तोरग दि बिजी बिजी बिजी हाइग दनि बा अदन सिदि पुनसी एसे पुनसी जि खुबा खुनम नि हाइब दो सिदा सुदुम प्रमान नि अकोगि फोन पंग मिन फंगदाबा फंगदाबा सुमु फंगकपा अदुबु ट्राइ तोगद्रग दि फंगोय हाइब बा फोन सिमदि थामजेगे ट्राइ तोबिबा मरुब लिसनर मयाम मन ट्राइ तोबनि ना मन हेक फंगिबदा मागि हेक ततखिबदा मन फंगनबो होनबो क्वा ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯇꯥꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯨꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯐꯪꯕꯁꯦ ꯐꯪꯏ ꯐꯪꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯏ ꯁꯨꯡꯐꯪꯕꯨ ꯐꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯤꯖꯤ ꯕꯤꯖꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯐꯪꯗꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯣꯏꯗ ꯐꯥꯎꯖꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯂꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯖꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯈꯥꯡꯕ ꯀꯟꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯊꯧꯅꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯄꯨꯡ ꯄꯨꯡꯈꯥꯏ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯅꯤꯐꯨꯒ ꯆꯪꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒ ꯐꯪꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯪꯗꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯅꯣꯉꯥꯜꯂꯒꯁꯨ ꯑꯃꯗꯨꯃꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯐꯣꯟ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯁꯥꯟꯅꯖꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯇꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯄꯥꯡꯒꯩ ꯃꯥꯀꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯒ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ
1: ꯄꯥꯡꯒꯩ ꯃꯥꯀꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ
0: ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯔꯤ
1: ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀꯪ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔ ꯌꯦꯡꯒꯦꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨꯡ ꯇꯧꯔꯝꯃꯕ ꯊꯝꯃꯝꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨꯡ ꯆꯠꯄ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨꯡ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯇꯧꯕꯗ ꯐꯪꯕ
0: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯐꯣꯟꯁꯦ ꯇꯧꯕꯨ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝꯆꯥꯡꯗꯣ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤ ꯐꯣꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯅꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯪꯕꯗꯣ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤꯅꯦ
1: ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯥꯔ
0: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯦ

0: हेलो
1: हेलो, गुड
0: हेलो,
1: मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग। हेलो लेडीज ता तराम नुकचरी कना ओ बिरो बना।
1: सिंजमई बायो तिलका रेगी सुशीला का ओसा
0: सिंजमई दगी सुशीला बु तराम नुकचरी केरी केरम ओ फोन फोंग दो पिग दो रिबा तक पियो।
1: आई सम हाइजेनिक बदिको पियो बिसिंते मतम मांगहनदना मपुर बगे मतें पांग बने काम दे है सारे सा
0: अदु को चप मान ना नुपा ओइब सिंग सु मत मांग हन दना निपि ओइब गि मतें हे पांग थोक पो क्वा आदि खुनाय सि दा नुपा नुपि पुन्ना हिंग मि नरि बनि ना अमन अम गि मतें पांग न बा क्वा अमन हेक संग बदा अमन गि तक पि
1: इचा नि पि आउ द बचे यम नुवा जते हाय तारे सारा दि नुमा आइन थबा म तौ म ग सुलो छनम ज सुको सा नुपीन हाबदि मुपादे गिदि नुपीन ए मामाना तौ रमि छे सि मदि लो संदि के आबगि एनो से नुपाम ता छ दि फोक फोक मन जला म जसा खे देन नुपी आउ द बसि जु नुवा के हाय तारे सा
0: आइ ए गि चादा आहा नुपा नुपी पुना यहोनिंग बा मदि नुपी ओर मगदि ममागी मतेंग हेना पांगलकनी हबेगी थाजबदुनी अदुबु अइना थमजनिंगबदी इचानुपादसु युमगी कुपनोमसिंग फजना हायरग तंबिरग मखोइजु मियमनी अदुना मखोइदसु तंबिरग दि ए समायन तौगदौबनी नत्रग अइना चथोलिङाइदा
1: तगु नुपान पिगे जेक
0: खरा दिदुम खेनबसे खरा दिदुम खेनबसे होय मदुदि लुतोंगदा नुपा नुपीगे दुमक साहौद करिदा दुम खेनबनिना खर खर खेनबदि दुमक लैबजानी अदुबु एखोइना नुपी यावदबा इमुंगसु दुमक पानरी हाइद हाइजबतारे को दुना नुपान दुम ए नुपीना नुपीना अनमबना
1: तौनरीबा
0: हेली हेली हेली नुपीना ममाई मतें नुपाना मपाई मतें हाइजबतारे को अदुबु याना यानाबा
1: अनिमोग यावसु नुवाइतेसा अनिसु
0: याम नुवाइजे थमोइद फाउबा इचा नुपी ओरमगदि ममाई मतें हेंग नपांग बिगदबादिगि थबक जथोखेंगाइद फीग फौरमगसु नोंग चुरकपद ए फी द लोक्सन बियु हेक हाइबदसु हेक नुंगाइबा क्वा सोमदा ताक पिरिसे अदुमकनि यामने याम नुंगाइ जतो बदि करि क्रम वफम ताक पिगने सिंजमै से हुजिक्से
1: सिंजमै बक प्लेकार सा
0: अदुम
1: नुंगाइ ने लई हाइ तारे सा
0: याम नुंगाइ जे नुंगाइ ने लई हाइब ताक पिबदा खै समान वारि छान बसे नुंगाइ तब मपाउ म हेक यारो गदि मथंग मथंग अदुम थमोय जे सोंदे गिबो क्वा दिगि नुंगाइ बो रगना नुंगाइ बसे
1: आइगि फोन थिन कोसा गुड मॉर्निंग गुम सुंग खान बद सुंगफांग फांग दबदो नेवाक से दुम बिजी बिजी हाइबदि न तब नेवाक फांग दे दुम हाइ ने बिसे आइ आइ फोन नंबर जे सी रेडियो स्टेशन ग जानना दर बसा ला काय खान ब
0: नते नते गुड मॉर्निंग मणिपुर द सु सिजि नरिब नंबर सोम नो जिक फांग ग वारि छाना जरिब नंबर सिनी अदुबु गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग द ना नुपी ओबि खक्तना फोन ट्राई तो बन तब अखोगि नुपा सिंग छु मयाम तोरक पनि ना अखोगि ट्राई तो रि मी से मसिंग हेंगत पनि ना फंगबगी केनो से कितंग चांस से कितंग हंदा बाहिज बतारे को हेलो लेडीज कुंबा गुड आफ्टरनून लेडीज तना नुपी खक्तना ट्राई तो बनि ना मागि फंगबगी केनो से खुदों चा बजे हेना
1: तुम मेसिन थोंग थोंग को फंग मरे येंगे ना तो ने फंग
0: याम नुंगाइ जे इसागि थबक्सु लेपी दबा मदि थरोम दसु सरुक या बिरकपा अदि तोपा कनाना करि करमबा वफम ताकपीर पुन खंगमिना सिको
1: वाइसा थैंक यू सर।

0: हेलो,
1: हेलो सर, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग। हेलो लेडिस्ता, तरामनुक चेरी कना उबिरबनो ताकपियु
1: सर, ए शर्मिला नी खुराई ले वांगो मनाक तेगी।
0: खुराई लाई वांगब मनाक तेगी सरमिलाबु तरामनुक चेरी ngasi nomaijing nimitsida keri keram wafom takpigani thambiyu
1: हाय सर, ए ngasi di ko खुजी गुड आफ्टरनून लेडीज, गुड मॉर्निंग हाय तारे को।
0: हेलो लेडीज ता हो है
1: अहमदाबाद सर की चिंग लेम्बा इन तप्पा खोंजल सिना एकोई लिसनर सिंगी फुल ऑफ तुना को यम फजन वरी वताई साबी बसे आई अहमदाबाद यम नुमाई है ना सर को थागत चली
0: सोमुसु थागत फोंग दुक
1: दुगा
0: चली
1: को
0: ताक पियो
1: इसे एकोई की बरक बरक ते इसे थाव दो इसे मपुम मपुम थाव ना लेडी कर है तारे लिसनर सिंगा कर पिंग पिंग सोंग ना थाम दो अदुदिने सितो दे सना कोई लिसनर सिंगी आवा बत उबी तुना इसे था दे तुना को लिसनर याम मसिं याम ना बा हाइ तुना को याम लो को दिबे से जिबु तु आइन था दे सब फोंग दु फरी हे ना तंतर कनि सर
0: मसी अखो गि संदोक लि बा अनाउंसर गि मखा पोले हाइज बता रे आइना हेक नसी गि पुंग 12 ग मिनिट 13 नि थोय दा थोरो मसी हेक सिनेजर मतुंग दा फिल्म से मंगा तामिना ख्रब मतुंग हलो लेडीज तदी अना वरी सनाजनिंग बगी तंजा दो लोग जबनी सोमना ngasi gi 13 suba listener oigadoribani ado matung da su akoi gi horen wakhal amadi isei su leiri adigi film isei tonga na leiri maram aduna isei se dum isei matam da isei hena tara su si matang si da di akoi gi nuksi jaraba listener sing lamdam si da leiri banu piu bising na kari karam ba phom tak pining ba adigi phone aham ba try tor pada ga phang bu da ga thakat pa gi phung dok pangam da bagi nungai ba pakhat pa adu puna खामी ना ना भाई जब बता रहे अतः बदी कार्यक्रम वापस तक पी गनी समीर
1: हाँ सर यहाँ तो मैं देख रही हूँ सर के प्रोग्राम से ऐसे सुरक्षा या जनिंग तो ना टॉप नहीं यहाँ कोई तो कावा दी ले जाते ऐसे थाम की मनुष्य अमूमू खट तंग तो जब नहीं ऐना लेकिन प्रोग्राम से ऐसे सुरक्षा तो
0: यहाँ
1: तो इन्हें या जाते लेते नपन हरे सी आउट अभी तक वो यंग नशी ना ना लोई बनाए बंब पुंगी खाना लेने ना बात पाम से अगर तेरे है तेरे अइने अइने यंग नशी जब आ मी अइने लूने तो जब आ अइने फना खंबा मी शिना अइ गुसु नशी ना तो गनी लूने खंग गनी है बो आ पाम से अच्छी खा
0: याम चुम वफमनी कनागुम अमबु नुक्षीरदी मंगोंदा नुक्षीबगी इनर्जी एदो पॉजिटिव इनर्जी ना मंगोंदेगी सु एंगोंदा पॉजिटिव इनर्जी एदो अदुमक हलकनी हाबा वफम दुनी मसीदी साइंस ने सु यारबो वफम सिंगि लक्त दुमक चनगदरुबेनी हाइजरीबा याम नुंगाइजे फोन तो बिरक्तुना थरमसी बु नुंगाइ ताक पिरक पा थागत पा फोंदोक पिरक पा सोमुसु थागत चरी यानी मथंग अमुक पुनः सानसी वरी अमुक कनाना अमुक करी करम वफम ताक पिरक पा पुनः अमुक तामिनसी थैंक यू।

0: Hello.
1: हेलो,
0: Hello, le disni kana oi bere bano.
1: खुराई तो गामले काय देखी नहीं बसंती
0: Basanti habi bako.
1: ना
0: Takpi yu kari kara mo bhum takpi gi ding.
1: हाँ नहीं दी लोग सिंह जे इसिंग लाई नहीं लाई नहीं ना याम हराऊं नहीं को सा अकोई गी दी इसिंग लाई तब नहीं ना वाब चो तुम वो इधे
0: Shongi lok se karam ba maike gi oi bi gado ribe.
1: आ कनो दनी नुंगो इधनी
0: Nungoi rom da.
1: अदवाई बुद्धि खुराई दल ले जाबनी है तो कुन गरे इसिंग लाइटे हमु खोई दो ए अदो जे हमु इसिंग जिंग अगा हमु ताऊना न बहने ये तो अरे इबन मिजी इसिंग लाइ बन मिजी दिया जामना नुआई को सा
0: अदो नुंगोई गी सोंगी लोगी से इसिंग जे चिंग बाहर से अखोई गी तुरे रोम देगी ओखर ओइगदोरी ब्रा कमाइना होजिक फिबम से
1: मैं थई चले इसान पानो उबले आई दी क्या अब कनो तौ दे दो हार बुदी सिंगरेंग असि मपाना अदो खर संग महुम ममुति सिंगले तबने हम सो सिंखा कदोरीबा अदो गी आवा बसु होइबा मते गीति पिनु पागी द सुयाम न ममंग जु अकोय इसला जे ने याम ना हाय कनो तौ गे कोसा अदो बुनु पिन पा दे राति समाने येबो नुपाने तौ बंगम दुने ती खोय न तौ बंगम द थबक सु कयाम लेइबा को अदुगा हाय बदा गाड़ी बराबर दिमाग बड़ा है ना तो खा ले
0: नुपाग नुपी के हक से आयाम बदलो इन्हें मक माने है जब बता रहे बहुत हद बदा बहुत की राइट तो माने तो आधे की कोई की सरकार की थबक सिंगदा ओजा से ओजा नुपाग नुपी का तोलोप सब माने है जरी बुका मुहिचंग वो माने रखें दी देखी सोम द गाड़ी बड़ा है बीरी देखी अखोई ना होटल दे कई दसा पोचा बचंग सु नुपी न तांग नी नुपी न होंग नी हबदि लेते है जरी बा सोम न तांगपी बा यामन मुख चुमी नुपा न गम बद नुपी न गम द बा नुपी न हे न खुलोय बद नुपा न खुलोय द ब थबक ले अदु न बो खोइना नुपा नुपी सी खुना छि द पुन अम न मगी मतिंग पांग ने रगा मा अम न अम गी अवा बद मेन खत ने रगा नुंगाई न लेमि न बदु न हे न फय न मयाम न सु थंबिरी को अदु सोम गी लबु माइ कई द सु मत मफ मफ गी दुम नोंग सिंग छि अदु मक लागा उबिरि ब लोग सिंग दो अखो इसिंग ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯧꯗꯨꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯃꯛ ꯐꯪꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ
1: ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯟꯁꯦ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯦ ꯕꯣꯛꯁꯦ ꯑꯩ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁꯪꯖꯩ ꯑꯩꯁꯨꯗ ꯀꯌꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯍꯪꯖꯕꯅꯤꯅ ꯍꯪꯗꯕꯅꯤꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯍꯪꯖꯕꯅꯦꯕꯀꯣ
0: ꯑꯣ ꯗꯦ ꯀꯤꯌꯔ ꯁꯦ ꯌꯨꯝꯗ
1: ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡꯗꯤ ꯁꯨꯇꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯏꯟꯒꯥꯡ ꯂꯣꯏ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯁꯨ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯊꯧꯔꯝꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯊꯕꯛ ꯌꯥꯒꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯪꯗꯕ ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯐꯣꯟ ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯗꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯁꯨ
0: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯐꯥꯎꯕ ꯐꯣꯟ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯈꯟꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯐꯣꯟ ꯈꯔ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯂꯤꯁꯅꯔꯁꯤꯡ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯜꯂꯒ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯇꯝꯕꯤꯔꯛꯄ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ
1: ꯐꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯊꯝꯖꯔꯒꯦ
0: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ

0: इंदौर कैसे भी वो थोड़ा खिलो इधर नती मावु सी तो फंदा ही नहीं कताई तो मुंह होंग करेगे
1: खांग दे बुआ बुआ ऐसी खुलांग खांग कर दे पोतों कर ले रहा हूँ हवाई मना नौ नौ लाओ बसे बोरी करा हाफ्सल लगा काजिंग चोकरा हाफ्सल लो मोरो तंखाई तो हाफ्सल लो हाउ क्रपोनी हाउडोंग मचा दो ये न पुई है बतूनी यम हाउनी
0: आंगे को दे इंदौर हाउडोंग मचा बुद्धि हाउडोंग मचा अखोई कैसे भी दो कना का मुक्सत कर गया
1: जा के देना मखोंग बन बनी ना
0: न ती माँ वो इंसान ना पिके यों तो चोक लो ब्रो माँ न सनिंग बले रे कसो आई के सत्त में याई देना अस आई की कार लाख निपुह है न पी विषय कंट कान है तेरा
1: वही बुआ नंग चलो है कदाई तो नोमा आई पोर खजिक तंग यों के हो बोरा गली तेरा कारी नोमा ले रंगनी
2: कई नो इन्हें इन्हें ना इबु यो ली दिया न पोते सित
1: हंगी है हिंचाबी है
2: आई ने दुकान देगी पोट की तंग लाउडिंग है इधर बोरा गली दे ले रंगा निकाय आई बुनु पाना हाँ दा गे गे तो ब्रो ऐसे सही कुमारी देगी ने कैथियन सी दे तारे इसे के तभी आएगी मनमु नपुन सी दे नम्बर पंगलो ये पत्ता बम नम्बर मतलब नम्बर मोइने इने
1: कदाई देगी नम्बरी नो दा के तभी शुभ नंग ना तू यामने सावरी बैठे हुए के तभी है नंग वो आराम बैठा वो ताऊ रुला ब्रो
2: है माँ ना दे बा ऐ सुने पादा बंगम दे बा आनी आओ खंग दे बा है माँ तादा कहीं तो रखिए
0: ऐ नंग की ना तो ये निमिन है ऐ ना साई देगी नंग आए दिनी ने नंग ना आ देगी लाख पड़ो नुआंग के गंग गंग तो ना नुआई तीन है ऐ नंग बुकरी ढांग रही नो नंग नंग हान है बस शेल दो चले इन्हीं है नुआई तीन तो ना शेल बुकरी हरे का पीड़ो बस है
1: बोले तो ना
2: अदू बोधी ऐ सुखांग है बस सोई तो ना तिलकने है बा तादें की पुक्तियल साउ पड़ो ऐ सुखांग है
1: बोले तो
2: अहिंग से तुम बाते यारों मुहाय बता दा
1: ठोक था मशीन नुपी से नुमिले नहीं है हम जिंग ना अंगों द क्वाक तो उन्हें तो लगा लोडे नुपासे सुमेदो वो कायों दे वो पंगा संदे मशीन द माने की निभाई की बताई की बा आयु की मुंह नुमी दांगे मुंह संदे ऐ कोई पोपंग पंबी से लोइन है चेंटा रे ही मा हाय बीमा ला ला ला ला ला, ला पोसे ला ला ला फोंग ने पीके ला वो है ना करी है बा वो तू चुम ना संगु तो लो चाह तब ट्रैफिक ओए दिए चुम दा मुक्ताई तो चुम दे सो अमुक्ताई तो
0: क्या थबी है नहीं असली होटल सी चाकियां हाउ दा है मधुगी होटल पंपी दूसरों मशक फजाइन है माबु नुपाक ले ब्रो
2: ओ गा सेन थांग अम पाइर गने माईगी मनाक तो दने अदम फम दुने लेबनी
0: हो
2: नंग हे चार रो हनु बो
0: ये हनु व काइना
1: ओइ बुङो करिनो करिनो ले खोदना पैसा पाइब सु माली न सखने न तौने नंग थोर पने दुसी बना
0: से इंदौर से लुपाली सिंह हमने कल के वो खंडी खड़े हम से बिरो मो ऐ कोई के तो बिना का सही इंदौर तो सही भी बतो ऐ नुआई तो भी हुआ नहीं इंदौर
2: तानिंग दे पैसे ला अनु अम ऐ कोई दिने पंगांग तो सुंगांग नहीं इने न ने अमुक सु ऐ वों तो सही नहीं ऐ न सु इने तो अमुक सुंगांग नहीं ऐ कोई दिने युंगी इमा इपा इसा इनाउ देगी है ना कई थियन फमिन बन ऐ कोई ने है ना नुसी ने ये इन्हे ऐ क्वा ले रख क्या अहुम ले रख उड़ा इमा मंगा ले रख उड़ा
0: इंदौर क्वा हबी ब्रो ऐ ले रख क्या ऐ ले रख क्या क्या था दिया नो ये सिक्की बोरा तो यार हाउ दे ने येरा चोक चोक जा भंगी दो
2: सौ द नतियदा मपाक पिजे गेलाओ हौजिक दिने बोरा हौना ब मना मसिंग दो लैरत्रब रखंग दे नो मखा मना सु बोरा हाउ बने खामेन मनागी बोरा सु हाउ बने Aduh tak ada. Borana borat tok pani. Aiyi anganggi mapanda insnar tambado. Pipsi Mister gi lising humdra manga thaga double layer ba.
0: Hoi hoi.
2: Aduh kini aina asai degi kaitian pamda kaitsa lisi. As kang de da light da bahai basina di light de do. As yang wai da tada.
0: Aduh. Nang senhui di kaya pibung amnya. Nanti, ayi budi nanti mingun di lorupan ya. Aduh, nang ni. Ani makai bau di pibung amgadro.
2: Madu di yam di datada. Aduh ki senhui du di sayol amadabu sing bang amgani datada.
0: Hai, hai, hai. Aduh di nanggi account number do tarakira. Hai, hai, ngai ko hai. Nanggi number do de hekta kapa aga.
2: Hoi, hoi.
0: Hai, kita di...
1: 7500,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
2: Nanti, oh uci kamu tu pai dri, natau lo, pai ning lagi pai ni, cak ning lagi cak kani, noi susah lu yadro, hmm, aini sali kuding hek panar ada na, aini dah mak tak ngang na badane, nak kadang do, lay bag tu tare, kunjil lo, hai ma, tada, sendoi do, soi dah na batau lagi, tada na. Lak ning mama tamda adum lak piyo.
1: Ketabi ya, ibele nang busau mukai dulu. Miam nang aina dulu nelayi bersih datu bunye ba.
2: Adum apa?
1: Nang yau draga di, aku ini kadi tau bungam duri no. Nang kara nama aina mitau widna. Nasago, natau.
2: Tada. Matang tada, matoi kombal lak piro ko.
0: Ya, kau. Matang ta.
2: Sayol ki laura suyai. Nungti gi koma suyai. Hoi da. Nungti gi hek lak piro ta da. Ibele. Sasla. Sasla.
0: Kari nun he maari shaklon si ba. As. Aibu. Ketabi gi mamai dang giyeng laga. Atang tok la drene aibu. Nati. Aibu. Nupi leter tu, senarai ko. Aiyi lupa le sing hendrang ado. Ya mana dah?
1: Oi bunga, nang bu, borang saru lah bro.
0: Ya.
1: Ngasih satu bu, hau bro. Kita bina nang onda borang sok sok sasi hai do. Hau bro.
0: Asa kang dre de indon, kadai dah hau bu borang oh yuk kang dre indon. Ado, aiyi foto yomzen biru bla.
1: Mo, nang ngasai, aku dah cint tanam iko.
0: Tanam iko don.
1: Nang ngasai hek tanam bagenya. Aku foto, luar hek sekiba.
0: Oh,
1: nungai terasa koi bungo. Aku sunya, yum dah kumagi tau ribani.
0: Aduh dia, indon posu layder bani na. Aku cintu, pichok birak lagi lah.
1: Bungo, biba budi ya ini. Aduh dah, kulang kang aroi ba, cengau dah habsin kiri. Wah mikon tagon kiri.
0: As. Aisy, kau ramen kacian sih dek kangdom sahre do. Bol suka huna de, misu sana de. Ma pol top pun mak ayeh biru do aibu dia. Kacil pamji singgah sana. As. Kangjeda, tawri saya. Tabuk tadi potah saya. Tofu mama kangjeda. Nungti di opis tercelaga. Amaga warisan apa? Kok saya? Sungang hangde bni. Ha. Hujik di tabuk tadi potah saya dia. Kok saya? Sungang hangi. Iman apa singsine dina? Sahi kuntran hukum tabuk dominar kesibu. Nomor deh hangat dia dah. Makhluk itu mati enggak. pan yam ne pang gi bini da ai wo ha maru ki sel du da ni tha gi soi de no hang i sia
3: ka ka ka ha wo sab tu bu su bi ro ba ho mang di ta ta bu de da ka ka ha na ti yam tuk tha na kai no ma di sho li du bu kai dor ge ka ka se lo sigi bar se se ani hum dang tau si si da hu mang soi da na tar ka ni lo ka ka se si da
0: ha se
3: Ama,
0: hey, bunga, sapa ba?
3: Kaka,
0: nang kaka siya. History tigal imin he. Kok siya? Recycling daw ribani niya. Yening hunbra hai bobo. Yening siya ti e day bunga.
3: Kay day long no ziki do di kaka. Nati yening ti e hai di do bo kari language no ba kaka?
0: Yeah, ha matelo ni da. Nakura na. Sahi kundra hai na thabak tor ko sida. Aigi department ki mi singdo dada mama ibungo asumai ne yam ne nungai ne thabak shumin ne rakpani hai amatang gore basu machet machet jamin ne duna yam ne nungsi ne rakpani
3: hai kaka
0: ayuki pung mapandagi nungtin gi pung mari phau ba thabak tong ne rakpasina imung manung gi mi singdagi di office ki mi wishing sine ne nungsi no ba helin he Hozik di pension phanglo ma tung si de dia ha wahai amat ta phau ba hangbi no ba leita ba gi wan ni go
3: ka ka gi nung si ja ba na ma na ba amat ta phau na bu hanglak tra ba ne ka ka
0: hanglak ke i mo hanglak ke
3: ye
0: isha gi pension ta ne ja ba phau ba isha ne ngam je drin he
3: o
0: khang na sa na ba singal du na di process ta ri ni adu bo chang lu ba da ko u ko lu ke ha ai ni to blak ba da di yam na harau ta yam na tawi dai ngo
3: adu di kaka gi wase wari ma dilai re sa kaka shu department da thabak tawri ngai da di nga khra thekalam ga da ba mali ne kaka kaka shu furit kundam do khra tha do e ba nati khudang gi do kundam pan da bi ne ta thekal e ba
0: ai nang na hai bu do ai khra bu di chu mi he ngo ai gi khuchina ne shoi do hek chatra ba thail lo leng dre Table do da tractor thoro ba tractor gi chaka do da na pi narang khara pak na ba tam do da phailo chale ngo
3: o
0: nang ka ka se samung ok chan pi

जागो या लोई चले उले ले चले ले चंदे मावां सा ले उले ले गा लोई अरे भी दिसूत रहना मामा बोली रे चांद बोर न तुली रे नो बिनो को किलो जे नो बो ने मामा बोली रे मामा तुम खुमी

0: इस हाँ मजे गवर्नमेंट लौद्री भनेको खागति लौबगे खागति ओर कहाँ फाँगपछि तारा फाँगपदेखि तारा मरि मङ्ग कुन मरि मङ्गा फो फुङ्छ उडे अदेखि ऐ पिन्थिन चले जाइभ कृषि चाहिँ तराको माथोइन थोइ बि तौज हुई अदुङ चाहिँ पिन्थिन चाहिँ पिई ऐको चाहिँ अदुङ खरादि हापिर माने अदु माइन तौजब निले मादु यामन वानदि ऐगा सिङदुन बुरु सिङदुन सिबिन थादोपि
1: ꯑꯗꯣ ꯏꯃꯥ ꯏꯃꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯄꯟꯕꯤꯔꯛꯏꯉꯩꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯏꯟꯈꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯤꯂꯥꯒꯨꯝꯕ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯆꯠꯄꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯂꯤ? ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅ? ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯄꯣꯟꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ?
0: ꯄꯤꯁꯤꯕꯥꯅ ꯌꯦꯟꯁꯜꯂꯤꯃꯤ?
1: ꯍꯣꯏ ꯆꯠꯂꯤ ꯆꯠꯂꯤ
0: ꯂꯥꯛꯏꯕ꯭ꯔꯥ?
1: ꯀꯥꯗꯤ
0: ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯕꯦꯝ ꯍꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯤꯉꯩꯅꯤ ꯂꯤꯅ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯤꯉꯩ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯃꯤ ꯅꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯏꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯃꯤ ꯀꯥꯔ ꯉꯟꯇꯥ ꯄꯨꯡ ꯇꯔꯦꯠ ꯅꯪꯕ ꯀꯥꯔꯅ ꯑꯌꯨꯛꯇꯒꯤ ꯇꯥꯕꯗ ꯄꯨꯡ ꯇꯔꯥꯃꯥꯊꯣꯏ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯂꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯧꯔꯝꯃꯤꯃꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯃꯉꯥ ꯄꯨꯏ ꯍꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯍꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯌꯥꯝꯗ ꯄꯨꯕ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯖꯒꯣꯏꯃꯛꯇ ꯃꯇꯦꯛꯇ ꯈꯤꯇꯥꯗꯦꯗ ꯈꯤꯇꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯔꯐꯥꯎ ꯖꯒꯣꯏ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯑꯒ ꯄꯨꯛ ꯅꯦꯔꯒ ꯁꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯛꯑꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯕꯒꯤ ꯁꯛꯑꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯔ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯍꯨꯝꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯂꯧꯔꯝꯃꯦ ꯂꯧꯔꯝꯒ ꯄꯨꯡ ꯇꯔꯥꯃꯥꯊꯣꯏ ꯇꯔꯦ ꯇꯔꯥꯃꯈꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯃꯦꯜꯂꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯖꯈꯤꯗꯣ ꯆꯥ ꯅꯨꯡ ꯂꯩꯔꯒ ꯁꯤꯝꯇꯔꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯁꯤꯝꯇ ꯏꯕꯦꯝ ꯅꯪ ꯈꯔ ꯄꯨꯕꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯪ ꯈꯔ ꯄꯨꯕꯤꯕ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯝꯃꯒ ꯊꯝꯖꯔꯝꯃꯒ ꯆꯠꯂꯦ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤ ꯇꯨꯄꯥꯟ ꯈꯪꯅꯕꯝꯗ ꯊꯅꯝꯃꯦ ꯃꯌꯣꯝ ꯖꯥꯟ
1: ꯒꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯏꯀꯥ ꯒꯥꯔꯤ ꯏꯀꯥ ꯒꯥꯔꯤ
0: ꯏꯀꯥ ꯒꯥꯔꯤ ꯏꯀꯥ ꯒꯥꯔꯤ
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
0: ꯏꯀꯥ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯒ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯗ ꯊꯧꯔꯤ ꯃꯤꯊꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯁꯥ ꯆꯠꯂꯒ ꯊꯧꯔꯒ ꯃꯃꯥ ꯁꯥꯔꯤꯃꯤꯅꯦ ꯏꯕꯦꯝ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕꯣꯏ ꯆꯥꯗꯕꯣꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯁꯥꯔꯤꯃꯤꯅꯦ ꯃꯃꯥꯁꯦ
1: ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯆꯥ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯣꯡꯉꯝꯃꯤꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯥꯔꯤꯅꯤ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ
0: ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯗꯁꯨ
1: ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯃꯤꯅꯤ ꯗꯩ ꯂꯤꯂꯥꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ
0: ꯆꯠꯂꯤꯅꯤꯕ ꯑꯍꯤꯡ ꯇꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯄꯥꯠꯇ ꯊꯝꯃꯝꯃꯤ ꯂꯨꯄꯥꯅꯤ ꯈꯛꯇ ꯄꯤ ꯅꯣꯉꯥꯟꯕꯒꯤ ꯊꯝꯕꯁꯤꯅ ꯍꯣꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯥꯐꯥꯎꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇ ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯑꯍꯤꯡ ꯂꯦꯛꯎꯒ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯂꯩꯌꯦ ꯂꯤꯂꯥ ꯂꯩꯕꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯉꯁꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇ ꯄꯤꯔ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯗꯅꯦ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯔꯤꯌꯥꯁꯦꯜ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯂꯤꯂꯥꯁꯦ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯨ ꯁꯛ ꯎꯅꯕ ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨ ꯁꯛ ꯈꯪꯅꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯈꯨꯔꯝꯖꯕ ꯆꯠꯂꯤꯕꯅꯤ
1: ꯄꯨꯟꯕꯝ
0: ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯔꯤꯌꯥꯁꯦꯜꯂꯝ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯂꯤꯂꯥꯁꯨ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯄꯔꯦꯡ ꯁꯥꯅꯨꯡ ꯇꯤꯟꯅꯅꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯅꯕꯁꯦ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇꯁꯨ ꯏꯕꯦꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯅ ꯄꯨꯅ ꯑꯩ ꯍꯣꯠꯅꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯗꯣ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯄꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯪꯉꯛꯄ ꯇꯧꯕ ꯆꯠꯄꯁꯤꯗ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯏꯕꯤ ꯑꯃ ꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯗ ꯌꯥꯎꯅ ꯆꯠꯄꯒ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤꯅ ꯗꯥꯟꯁ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯆꯠꯄꯁꯤꯅ ꯀꯜꯀꯇꯥ ꯗꯨꯔꯒꯥꯄꯨꯔꯒ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯠꯂꯤ ꯔꯥꯖꯤꯕ ꯒꯥꯟꯙꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯠꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯅꯥ ꯖꯥꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯎꯠꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯎꯠꯂꯦꯕꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯅ ꯕꯣꯁꯟꯇ ꯔꯥꯁꯁꯤ ꯎꯠꯂꯦ ꯔꯥꯁꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯔꯥꯖꯤꯕ ꯒꯥꯟꯙꯤꯁꯤꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯒ ꯄꯦꯟꯕꯤꯒ꯭ꯔꯗꯅ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯆꯪꯉꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯛꯇ ꯆꯪꯉꯛꯇꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯏꯃꯥꯒ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯂꯣꯟꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯦꯗꯣ
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯎꯠꯂꯛꯏꯅꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤꯅꯦꯕ
0: ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯈꯪꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯅ ꯈꯪꯖꯗꯕꯅꯤ
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯅꯃꯁꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯒꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯖꯍꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯐꯪꯉꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯨ ꯆꯠꯂꯤ ꯂꯤꯂꯥꯁꯨ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏ ꯇꯧꯅ ꯑꯩ ꯄꯨꯖꯔꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯗꯤ ꯋꯥꯖꯩ
1: ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯏꯃꯥ ꯏꯃꯥ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥꯒꯨꯝꯕ ꯒꯧꯔ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯁꯟꯁꯦꯟꯕ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯝꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯥꯇꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯃꯥꯏ ꯇꯧꯏ ꯃꯁꯤ
0: ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯊꯧꯕꯥꯟ ꯌꯥꯏꯔꯕꯣ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯡꯒ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯈꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏ ꯈꯣꯡ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯈꯣꯡ ꯉꯥꯏꯈꯣꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯁꯦꯡꯕꯥꯏ ꯑꯋꯥꯡ ꯁꯦꯡꯃꯥꯏ
1: ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤ
0: ꯃꯤꯅꯝꯗ ꯇꯥꯗꯕ ꯂꯝꯐꯥꯎ ꯄꯨꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯥꯡꯒ ꯈꯨꯟꯖꯥꯎꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯣꯉꯥꯝ ꯃꯨꯟꯗꯨꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯂꯥꯜꯂ ꯆꯠꯇꯣꯔꯤꯃꯤ ꯊꯥꯡ ꯂꯥꯡ ꯆꯠꯂꯨꯔꯤꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃ ꯏꯁ ꯎꯆꯦꯕꯤꯅꯥꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯗꯤ ꯃꯍꯥꯗꯤꯒꯤ ꯍꯦ ꯅꯥꯀꯟꯒꯤꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯇꯥꯕꯗꯨ ꯃꯥꯗꯤ ꯂꯩꯍꯧꯔꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯊꯟꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯄꯥ ꯁꯥꯕꯗꯒꯤ ꯆꯠꯂꯒ ꯇꯤꯟꯅꯔꯤꯃꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯎꯇꯨꯛ ꯎꯇꯨꯛ ꯄꯥꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯂꯥꯛꯇꯤ ꯂꯥꯛꯅ ꯂꯥꯛꯇꯦꯅ
1: ꯑꯗꯣ ꯏꯃꯥ ꯏꯃꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯃ ꯆꯠꯄꯁꯦ

0: लोन नोपुर खोजन ताहंदना लोन लोन लिंग थुरकना कुंजा मागे पांगले।
1: इसी बीमा अखोई होजी गवर्नमेंट डांस कॉलेज दगी गुरु सूत्रधारी होना थबक दगी पोथा बीरबी इमाई बीमा थोंगाम उंगबी पुंछी देवीगा इसी बीमा का उन्नदना वारी सानबा मयाम पुना तामिनारे
2: अहुई नाव बीमा
1: थबरम पुथोक भी थोकचोम रेनुबला
2: अदुदी नाव बीमा वारी वता इसी सुतामिनर बनीना गसी की वैन दी नुपी की थबरम लोशीन बतौरसी इसीलिए नाव कैनरसी
1: फनी फनी इसी बीमा
3: नुपी की थौरम ताबिरे आकाशवाणी इम्फाल हौजिक मथंग दम ताबिरसी वेस्टर्न म्यूजिक की थौरम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमरीकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की
1: रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
3: ईपीएफओ की एमिनिस्ट योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
4: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एएमटीएस और बीआरटीएस के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद बीआरटीएस देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर ये बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।
6: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
7: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की ग्वो हन्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलादिनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ड्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में

ही आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी इम्फाल का कंगला चैनल है। मीडियम वेव 340.1 मीटर अर्थात 882 किलोहर्ट्ज़ पर फौजी दोस्तों के लिए प्रसारित दैनिक कार्यक्रम अब आरंभ होता है।

दोस्तों, आज कार्यक्रम एक ही रूप में हम लेकर आए हैं फिल्म दाग के कुछ गीत। दाग 1973 में बनी हिंदी भाषा की एक प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म है। इसका निर्देशन यश चोपड़ा ने किया और ये उनकी निर्माता के रूप में पहली फिल्म रही। इसी फिल्म ने यशराज फिल्म्स का नींव रखा। फिल्म में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, राखी मदनपुरी, कादर खान, प्रेम चोपड़ा और एक हंगल मुख्य कलाकारों में शामिल हैं। आइए सुनते हैं इस फिल्म का पहला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में।

दोस्तों, फिल्म दाग के सभी गीत साहिल लुधियानवी द्वारा लिखित और सारा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित है। आइए अब सुना जाए अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की ही आवाज़ों में।

दोस्तों, ये फिल्म यानी डार्क फिल्म जो है थॉमस हार्डी के प्रसिद्ध उपन्यास द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का रूपांतरण है। इस फिल्म में सुनील यानी राजेश खन्ना अपनी पत्नी की रक्षा के दौरान आत्मरक्षा में अपने बॉस को मार देता है और एक भगोड़ा बन जाता है। अपनी पत्नी से अलग होकर वह अपना नाम बदल लेता है, एक नई जिंदगी शुरू करता है और एक ऐसी दूसरी महिला से शादी कर लेता है जो बिन ब्याहे माँ बनती है। सालों बाद उसका अतीत लौटकर उसे परेशान करने लगता है, जिससे उसे उन दोनों महिलाओं में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है जिनसे वह जुड़ा हुआ है। आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

दोस्तों, इस फिल्म ने दो फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। यश चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और राखी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। अगला गीत सुना जाए किशोर कुमार की आवाज़ में।

आकाश वाणी इम्फाल साइडी लोमबू तोहबू जान रोन कनाई नई नई ते मिखा तंबल बुबई कबु मिताम तंबल मीडियम वेव मीटर फैथोम रिगदाय पॉइंट खचर कैलो हाज फाइद सर एक सत्न कनाई थावर मिखा ला लौदिखो अस इजा खतुम चम चम तंबलौनी माइ रुजी उलिऊ माइ राय माइ बिष्णुपुर डिस्ट्रिक ओलंपिक गेम्स चिंगई चुन सरोक असाई मोरंग तों चिंगई लंपा खाउ कमु रोई लौकथे कमुंग खोटाई गवर्नर अजय कुमार बाला चीफ मिनिस्टर यमनाम खेमचान सिंह होम मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम एमएलए नोन टी रोविंद्रो इरेंगबम नोलिनी एस प्रेमचंद्र खनिथोंगाम शांति रगों गजाव लुकने कमुंग खोटाई जावकाउ कन माइ पुलुप तली मै नोन खां सुअन ती लौकने चब्रेक तोंग लाम लु अजुनी तंपत लुकने जाम पुंगु सनसान तकै कन माइ पुलुप तली मै कमुंग ताई पुलुप तली मै मनसाई कगोइना चिंखत फाइ

खुदा की मरी सुबह ताबी रसी सिरो लिली फिल्म दगी कुंजे बिहारी ने सकपे से सरेंग बा आर के अमर जी सरेंग बा ओइनाम गी खनबिर कुसुंग दी वांगजिंग टेन था दगी श्याम कुमार अनिन संतोष समदी कांता

जी आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़े हैं आप और प्रोग्राम चल रहा है हर सिंगार, आपके साथ मैं विकास। गीत से पहले मैंने एक गीतकार का जिक्र किया और मैंने कहा कि उनकी मुलाकात हुई भगवान से और भगवान ने उनसे कहा कि मेरे लिए चार गीत लिखो। जी अचानक से ये कौन शख्स हमारी बातचीत का हिस्सा बना, ये तो जानना दिलचस्प है। बहरहाल ये जो शख्स रहे गीतकार के तौर पर, ये कोई और नहीं आनंद बख्शी साहब रहे, और जो भगवान रहे वो रहे एक्टर भगवान। आनंद बख्शी साहब का वो सफ़र काफ़ी मुश्किलों का दौर कहा जा सकता है और सफलता एक तरह से अभी थोड़ी सी दूर थी। हर कलाकार का जैसा शुरुआती समय होता है, बिल्कुल वैसा ही समय आनंद बख्शी साहब के लिए था। लेकिन

किस्मत की जो गाड़ी थी वो अचानक से पलटी, और कह सकते हैं कि यहां से आनंद बख्शी साहब का फिल्मी सफर चमकने लगा। भगवान दादा की जब आनंद बख्शी साहब के साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने एकदम से उनसे पूछ लिया कि तुम क्या करता है, जिसके बाद आनंद बख्शी साहब ने कहा कि मैं तो गीत लिखता हूं। तो एक तरह का ऑफर आनंद बख्शी साहब को मिला भगवान दादा के जरिए, और अपनी फिल्म के लिए उन्होंने उनसे 4 गीत लिखवाए। फिल्म का नाम था भला आदमी, और 1958 की ये फिल्म थी। और इसी फिल्म के बाद कह सकते हैं कि हिंदी फिल्मों के गीतकार के तौर पर एक और सितारा इस दुनिया को मिला।

ओम की गुड़िया। और फिल्म में जो दो आवाज़ें हमें सुनाई देती हैं वो है लता मंगेशकर और खुद आनंद बख्शी साहब की। संगीत इस फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का रहा। और अगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी साहब की कॉम्बिनेशन की बात करें तो इन दोनों ने तकरीबन 300 से ज़्यादा फिल्में साथ की और 1600 से ज़्यादा गीत अपने चाहने वालों को दिए।

प्रोग्राम का ये आखिरी गीत आप तक पहुंचता है। फिल्म का नाम है इश्क पर जोर नहीं, 1970 की यह फिल्म है और एसटी बर्मन साहब का संगीत है और आनंद बख्शी साहब के कोलैबोरेशन की अगर उनके साथ बात करें तो तकरीबन 14 फिल्मों में उन्होंने काम किया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरा होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फू कॉक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विरासत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से कल शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने चीन के आउटडोर्स में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking calls from our listeners on mutual fund-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I'm Sarabjit Kaur with my co-anchor, Subodh Mishra.
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2371-0481 और 2371-7106. श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट आकार रस्तोगी. आकार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: जी धन्यवाद.
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर.
0: फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टर्न नेट बायर्स आफ्टर 4 months, इन्फ्यूज मोर देन 15,000 crore रुपीज इनटू इंडियन इक्विटीज सो फार इन जुलाई. Situation in West Asia intensifies as Iran once again shuts the Strait of Hormuz in response to United States' fresh airstrikes. And domestic investors to focus on macroeconomic data. First quarter.
1: देश के निवेशकों का फोकस रहेगा आर्थिक आंकड़ों, कंपनियों की पहली तिमाही के नतीजों और वैश्विक गतिविधियों पर.
0: And before we go any further in the program, may we just once again remind our listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: Sarabjit aur hamare callers intezar mein hain.
0: Ji.
1: सीधे चलते हैं उनके पास. यूपी से विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं. विवेक, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
3: हाँ, मार्केट मंत्रा टीम और आज के एक्सपर्ट को नमस्कार.
1: नमस्कार.
3: मेरा प्रश्न ये है, मैं इक्विटी क्लास में एसआईपी के द्वारा, मंथली एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टेड हूँ और सर बीच में जो मुझे कुछ एरियर मिलता है उसको मैं लमसम अमाउंट में, कम अमाउंट होता है तो उसको लिक्विड फंड में डाल के एसटीपी के माध्यम से मैं अपने करंट जो एसआईपी है, करंट म्यूचुअल फंड है, उनमें इन्वेस्टेड करता हूँ. अब सर चूंकि आईटीआर मुझे फिल करना है तो मैंने एआईएस डाउनलोड किया है, उसमें मुझे सर अपनी म्यूचुअल फंड की एंट्रीज मिली हैं और उसमें सर एक सेल्स कंसिडरेशन और कॉस्ट ऑफ इक्विशन, ये दो मुझे चीजें मिली हैं जिसमें मैंने जैसे 5,000 रुपए का एसटीपी चालू किया हुआ था तो सेल्स कंसिडरेशन में 5,000 और कॉस्ट ऑफ इक्विशन में अमाउंट कम है 4,750 रुपए. तो मैम मुझे क्या टैक्स एप्लीकेबल होगा क्योंकि मैंने तो केवल एक लिक्विड फंड से और अपना जो करंट एसआईपी फंड है उसमें ही इन्वेस्टेड किया है, कोई रिडीम नहीं किया है कोई भी अमाउंट, तो क्या मुझे टैक्स

0: एप्लीकेबल होगा और मुझे उस टैक्स को कहाँ आई टी आर वन, जैसे मैं सैलरीड एम्प्लॉई हूँ तो मुझे आई टी आर वन फिल करना है, तो मुझे उसमें कहाँ शो करना होगा? क्योंकि मैंने ए आई एस डिटेल चेक किया तो उसमें मुझे अपनी एंट्रीज, जो भी मैंने लमसम अमाउंट किया था उसको एस टी पी के माध्यम से कई सारी एंट्रीज दी हैं, मुझे उसको कैसे शो करना होगा, प्लीज गाइड करें।
1: विवेक जी बिल्कुल, आपको इस पे टैक्स देना पड़ेगा। भले ही आपने जो अपनी म्यूचुअल फंड्स में आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो आपने रिडीम नहीं की, लेकिन जिस टाइम आपने एसटीपी सेटअप किया और एक लिक्विड फंड से आपका पैसा निकल करके हर महीने जब वो इक्विटी फंड में गया, तो भले ही वो एक ट्रांसफ़र हुआ लेकिन टैक्सेशन पर्पज़ से उसको एक तरीके से यही माना जाएगा कि लिक्विड फंड में से पहले वो पैसा रिडीम हुआ और उसके बाद जाकर के उस नए इक्विटी फंड में वो पैसे इन्वेस्टमेंट हुई। तो इसके लिए जैसे कि आपने अपने क्वेश्चन में खुद ही बताया कि कुछ 5,000 रुपये का सेल कंसिडरेशन है और 4,700 रुपये का जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, बेसिकली परचेज कॉस्ट है, तो जो इन दोनों का डिफरेंस है वो आपका मुनाफा है, प्रॉफिट है, जिस पर कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स भरने के लिए देखिए, जो डेट फंड्स है, डेट फंड्स पे आजकल जो टैक्स है वो आपके जो भी आपका जो इनकम पे जो स्लैब रेट है, जिस भी आप स्लैब रेट में फॉल करते हैं वही आपको उसी पे आपके लिए टैक्स एप्लीकेबल होएगा। तो सबसे पहले आपको एक दो चीज़ें करनी चाहिए। एक तो आप कैम्प्स की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से एक कैपिटल गेन स्टेटमेंट पूरा का पूरा पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए अपना डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस फंड पे, इक्विटी पे, नॉन इक्विटी पे आपको कितना कैपिटल गेन है। वहीं पर साथ में जो इस पे आपको टैक्स के लिए जो आपको अपनी आईटीआर में देना है, जो आईटीआर वन होता है नॉर्मली उसमें जो अगर खाली आपका इक्विटी फंड से कैपिटल गेन होता है 1.25 लाख तक का तो हम रिपोर्ट कर पाते हैं, लेकिन जैसे कि आपके केस में है कि आपने एक लिक्विड फंड में किया था वहां से कैपिटल गेन हुआ है एक नॉन इक्विटी फंड से, तो जहां तक कि मेरी जानकारी है आपको आईटीआर 2 में उसको दिखाना पड़ेगा कैपिटल गेन्स के शेड्यूल में। भले ही अमाउंट छोटा सा हो लेकिन उसको हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा और उस पर जो भी एप्लीकेबल टैक्स हो देना पड़ेगा। बाकी टैक्सेशन के लिए एक दफा बेहतर रहेगा कि आप एक टैक्स एक्सपर्ट को भी कंसल्ट कर ले।
2: All right, and now let's ask Yashpal ji, what is his question? Yashpal ji, sawal poochhe.
3: Good evening, ma'am.
2: Good evening.
3: Actually, my portfolio and the mutual fund is well diversified presently, but to have more stability, I want to go for profit booking from some of the funds where the return is more than 10%, and to invest in some more stable funds like liquid funds, debt funds, and even the secured corporate bonds also where the interest rate is around 11% with A+ rating. So my time horizon is around 3 years and I'm 62 years old. Please advise which is better option. Thank you.
1: So, as far as I can understand, you plan to bring some kind of stability in your portfolio. Profit booking just because, you know, you have, crossed a certain threshold of the annual returns which was set in your mind would not be right, to be honest. However, what you should be doing is you should arrive at an asset allocation. At the age of 62, I believe, if this is a portfolio which you also use to derive income, the general equity allocation should be at least 30 to 40% of the complete portfolio. And if it is something that, this portfolio is not something on which you are dependent for deriving a regular income, then probably 50 to 70% can be very much in equity. So first you need to decide on the total asset allocation, and post that, you can transfer the money into the fixed income part. For fixed income, I would say if you have a horizon of 3 to 4 years, a good quality short duration debt fund would be the right choice. Liquid fund is something which can be opted for the expenses which are due within the next year. So, for goals which are falling in 1 year, maybe a liquid fund is fine. Otherwise, go for a short duration debt fund.
4: जी आकार, अभी एक श्रोता जो सवाल पूछ रहे थे हमारे कैपिटल गेन्स के बारे में,
1: हाँ जी,
4: वो हमारे कई श्रोताओं के लिए और हमारे लिए भी बहुत अभी चिंता का विषय बना रहता है जब हमें टैक्स फाइल करने का वक्त आता है तो।
1: जी जी,
4: और सबको लगता है कि भाई वो कैसे होगा, क्योंकि कुछ शॉर्ट टर्म हो सकता है, कुछ लॉन्ग टर्म हो सकता है, और कई दफा होता है कि एमएफ सेंट्रल से जो स्टेटमेंट आता है उसमें नहीं होता। क्या हम इसको अलग अलग जो जहां हमने डाला हुआ है जिन म्यूचुअल फंड्स में, उन कंपनियों की जो वेबसाइट है अपनी, उन पर भी जाकर ले सकते हैं हम?
1: जी जी बिल्कुल,
4: वो ज्यादा डिटेल में शायद आता है और हर किसी का अलग अलग आता है उसमें। इसमें एक साथ मिल जाता है आपको म्यूचुअल फंड।
1: हाँ जी,
4: हाँ, सेंट्रल में।
1: हाँ जी हाँ जी, बल्कि अगर आप कैंप्स पे जाएंगे तो कैंप्स पे जाने से सहूलियत ये हो जाती है कि आपको अपने जो भी आपके अक्रॉस द फंड हाउसेज गेन्स है वो सब आपको एक जगह मिल जाते हैं एक स्टेटमेंट में। बट वहीं अगर मान लीजिए अगर किसी ने कुछ 10 फंड हाउसेज के अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट किया है और वो हर फंड हाउस की वेबसाइट पे जाएगा तो उसको 10 तरीके के स्टेटमेंट निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे सारे के सारे एक ही जगह मिल जाएंगे और वहां पे पूरा का पूरा मेंशन होता है कि कितना इक्विटी फंड्स में है कितना नॉन इक्विटी फंड्स में। आप चाहे तो उसको एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। रिटर्न भरते हो अगर आप खुद जैसे जब रिटर्न भरेंगे तो फिर एक्सेल वाले फॉर्मेट थोड़ा सा ज्यादा सहायता पूर्वक रहता है, वहां पे आप कैलकुलेशंस इजीली कर पाते हैं।
4: जी, और अब पहली खबर पे हम नजर डालें आज की कि एफपीआई का रुख बदला है। लगातार 4 महीने तक बिकवाली का दबाव बनाए रखने के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई ने जुलाई में रुख बदला और इस महीने अब तक उन्होंने भारतीय शेयर बाजार में 15,157 करोड़ रुपए का निवेश किया है। सेमीकंडक्टर्स के वैश्विक व्यापार में कमजोरी से एफपीआई अब फिर से उभरते हुए बाजारों का रुख कर रहे हैं। देश के बेहतर आर्थिक संकेतकों, कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता और तिमाही आमदनी की अच्छी खबरों से विदेशी निवेशकों में उत्साह रहा है। सरकार की टैक्स नीति में बदलाव के बाद विदेशी निवेशकों ने भारतीय ऋण बाजार में लगातार दिलचस्पी दिखाई है। जुलाई में अब तक उन्होंने एफएआर के जरिए 6,625 करोड़ रुपए और जनरल रूट से 3,228 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
2: एंड लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर रवि फ्रॉम दिल्ली। रवि जी, सवाल पूछे।
5: मंत्री मंत्रा जी नमस्कार, ये मेरा पहला सवाल है। जैसे मैं 10,000 रुपये मंथली SIP चला रहा हूँ तो इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है? और दूसरा मेरा सवाल जो ईरान और अमेरिका का ये हॉर्मोस बंद होगा तो मार्केट गिरने की संभावना है या नहीं?
4: ये बहुत अहम सवाल है जो कई लोगों को ये गलतफहमी या खुशफहमी रहती है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट।
1: जी जी बिल्कुल रवि जी, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कंपाउंडिंग बिल्कुल मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो कंपाउंडिंग मिलने का तरीका है वो एक नॉर्मल FD से थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए अगर एकदम सरल भाषा में बात की जाए तो कंपाउंडिंग का मतलब होता है आपके इंटरेस्ट या रिटर्न के ऊपर इंटरेस्ट। अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, रिटर्न मिल रहा है तो रिटर्न के ऊपर रिटर्न। FD में अगर आपने देखा होगा तो आमतौर पे ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए अगर 1,00,000 रुपए की FD की और मैच्योरिटी पे उसमें 10,000 इंटरेस्ट मिला तो अगली बार आपको 1,10,000 पे इंटरेस्ट मिलता है, तो वो हो जाता है कंपाउंडिंग। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि जो भी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो आपको रोज के रोज आपके NAV से डिसाइड होती है। एक NAV डिक्लेयर की जाती है जो कि आपके अंडरलाइंग असेट्स की वैल्यू होती है और यहाँ पे उस NAV के थ्रू अंदर ही अंदर जिस तरीके से वो कंपनीज की ग्रोथ हो रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ हो रही है तो वो वहीं के वहीं कंपाउंड होता रहता है। तो यहाँ पे आपको FDs के तरह एक अलग से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपके कोई खाते में एक अलग से नहीं आएगा, लेकिन वो जो NAV है वही आपके कंपाउंड होती रहेगी। तो वो टाइम बाय टाइम आप देखेंगे तो आपको जो एक टोटल मुनाफा होता है वो ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करती है बट बेनिफिट वही मिलेगा।
4: जी, और किसी भी सूरत में ये इंटरेस्ट नहीं है।
1: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये इंटरेस्ट नहीं है
4: जी।
1: और एक दूसरा सवाल था आपका कि अभी जो ईरान में टेंशन चल रही है, वेस्ट एशिया में टेंशन चल रही है तो अभी मार्केट गिरेगा कि नहीं? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मार्केट एकदम आगे आने वाले समय में कैसा होगा वो मैं क्या आपको कोई भी बहुत ही श्योरिटी से नहीं बता सकता क्योंकि वो किसी के हाथ में नहीं है। बट हाँ, इसमें कोई शंका नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से मार्केट चल रहा है और जिस तरीके से अभी टेंशन चल रही है, आने वाले कुछ करीबी समय में मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल जरूर रहेगा। बट एज एन इन्वेस्टर आपको एकदम जब भी इक्विटी में निवेश करें तो एकदम आने वाले एकदम पास के समय के लिए मत करें और ना ही उसकी चिंता लीजिए। आप बस एक डिसिप्लिन तरीके से आपने एक SIP चालू करी हुई है, आप मैं मानता हूँ आपने जरूर एक अच्छे फंड में निवेश किया होगा, आप बस पूरे दिल से बिना घबराए हर महीने डिसिप्लिन से उसमें निवेश करते रहिए और अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 साल रखिए तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
4: जी, अगले कॉलर हैं कर्नाटक से वीरेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
6: गुड इवनिंग मार्केट कंसल्टिंग।
4: गुड इवनिंग
6: आकार जी, आई वांट टू इन्वेस्ट
0: 4 lakh rupees for about 6 months to 1 year. Which fund should I invest for lump sum?
1: Virinderji, your horizon is 6 months to 1 year, so I would say you should definitely not go beyond a liquid fund when it comes to mutual funds. So for such a short duration, liquid fund would be a great choice. While choosing a liquid fund, what you should be looking at is the expense ratio. Definitely lower the better, because there won't be huge difference in returns when it comes to liquid funds. In fact, if you see a liquid fund with a unusually high return than others, then you should not be opting for it. Because while investing in fixed income, the main objective should not be to optimize or to maximize your profit or returns, but rather it should be to bring stability and preserve your capital. Alternatively, you can very well go for a fixed deposit for such a short period of time, because when it comes to the taxation, both are on the same level now. But yes, there will be definitely more liquidity and flexibility in mutual funds, because you would not have to commit to a fixed time period, which would be the case in a fixed deposit. And in case if you go for a fixed deposit, say commit a time period and then happen to withdraw it before that, you'll have to pay penalty on the interest amount. So if you want to go for liquidity and flexibility, opt for a liquid mutual fund for this duration.
2: All right, let's ask Yogesh ji, what is his query? Yogesh ji, sawal puche.
6: Ji, namaskar aap sabhi ko. Mera sawal ye hai ki mutual fund central, MF central ka hum log istemal karte hain abhi login karke portfolio dekhne ke liye, MF central ka. MF central mein ek feature aaya hai jab bhi login karte hain ki voluntary lock-in. So mutual fund units ko voluntary hum log extra lock se laga sakte hain, taki redeem karna usko mushkil ho paye extra security ke liye. Ye kitna kargar hai aur kya ye AMC level pe bhi kaam karta hai, sirf MF central ka apna feature hai?
1: नहीं, अभी सेबी द्वारा कुछ टाइम पहले डायरेक्टिव आया था कि अगर आप चाहे तो एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए लॉक इन लगा सकते हैं, जो बेसिकली साइबर फ्रॉड्स होते हैं, कुछ और तरीके के जो इंटरनेट फिशिंग अटैक्स वगैरह होते हैं, कुछ फ्रॉड्स होते हैं, उनके लिए एक ये स्टेप अहेड है. डेफिनेटली एक एडेड फीचर है, एक एडेड सिक्योरिटी है. इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, एक वहां से लॉक इन लगा सकते हैं. बट फिर जब भी आपको रिडिम्शन करना होगा, आपको उससे पहले एक दफा ये लॉक इन खुद हटाना पड़ेगा.
4: जी, अगले कॉलर है राजस्थान से, राजेश. स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
7: नमस्ते सर, मैं राजेश कुमार गुप्ता कोटा राजस्थान से बोल रहा था.
4: जी
7: सर, वो मैंने कोटक की टैक्स सेवर फंड में निवेश किया हुआ है, तो सर अब इसमें रिडिम्शन का क्या नजरिया रहेगा सर, क्योंकि मार्केट कभी भी स्थिर नहीं रहता, कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो इसमें जो टैक्स सेवर फंड है सर, इसमें रिडेम्पशन का कितना अमाउंट निकाल सकते हैं या क्या उचित रहेगा सर?
1: राजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो टैक्स सेवर फंड है, जो ELSS फंड है, इसमें आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक्ड इन है. तो जिस भी तारीख को आपने पैसा इसमें निवेश किया होगा, तब से लेकर के अगले 3 साल से पहले आप रिडीम नहीं कर सकते. अगर आपने लमसम किया होगा तो, और अगर आपने SIP के द्वारा निवेश किया होगा, तो हर SIP इंस्टॉलमेंट की डेट से उस पार्ट के लिए 3 साल वहीं से काउंट होंगे. तो कम से कम सबसे पहले तो रिडिम्शन के लिए 3 साल का पीरियड होना चाहिए. उसके अलावा देखिए, जो ये फंड है, ये एक अच्छा फंड है, एक एवरेज फंड है, एक प्योर इक्विटी फंड है, जो सारे ELSS फंड्स होते. मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना चाहूँगा. आपने कहा कि इस वक्त मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं है, कभी नीचे कभी ऊपर. इक्विटीज़ उसी तरीके से होती है, जो मार्केट है उसी तरीके से होता है. शॉर्ट टर्म में अगर आप कभी भी मार्केट देखेंगे इतिहास में उठा करके, तो शॉर्ट पीरियड में हमेशा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे रहेगा. लेकिन अगर आप वहीं पे एक लंबे समय का उठा करके देखेंगे, 10 साल पहले का उठा करके देखेंगे कि 10 साल पहले मार्केट कहाँ था और आज कहाँ पर है, तो आपको आइडिया लगेगा कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है. तो इसमें अगर आपको ज़रूरत है, आप रिडीम करना चाहते हैं, तो मिनिमम 3 साल के बाद आप रिडीम कर सकते हैं. जिस तारीख पे आप रिडीम करेंगे, उस दिन जो NAV होगी उसके हिसाब से और जो आपके यूनिट्स है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका जो वैल्यू आएगा, उतना पैसा आपको मिलेगा.
2: All right, Akar, we'll continue with the discussions. But first, let's take a look at the next big story of the day. Iran's Revolutionary Guard said it had closed the state of Hormuz until further notice and warned of further action if U.S. strikes continued. The United States launched fresh airstrikes on Iran this morning. The airstrikes came after Tehran attacked a commercial vessel in the Strait of Hormuz, setting it ablaze and forcing its crew to abandon ship. U.S. Central Command said it targeted around 140 Iranian military sites, including missile, drone, and communications facilities. Iran retaliated with missile and drone attacks targeting Bahrain, Kuwait, Qatar, and the United Arab Emirates. Qatar and Kuwait said they intercepted the incoming projectiles, while Bahrain also activated missile alerts. Iran also claimed to have carried out strikes on a U.S. military base in Jordan.
4: अगले कॉलर हैं दिल्ली से रमेश स्वागत है आपका सवाल पूछे
8: सर नमस्कार
4: नमस्कार
8: सर मैं आई एम 70 ईयर ओल्ड सर मेरी 70 साल सर मेरी उम्र है सर मैंने कभी म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाया सर मेरे काफी दोस्त मुझे कहते रहते हैं लगाओ लगा ले करो तो थोड़ा थोड़ा सर गाइड करा सकते हैं सर कैसे लगाएं किस तरह लगाएं सर बता सकते हैं प्लीज
1: जी जी बिल्कुल देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड में जैसे कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं तो जैसे कि अभी हम कुछ एक दो कॉल्स पहले बात कर रहे थे उसके लिए होराइजन थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा इक्विटीज में निवेश करने के लिए आपका होराइजन कम से कम 5 साल का होना चाहिए और वहीं पर मैं समझता हूँ कि इवन एट द एज ऑफ 70 एक रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि इक्विटी में निवेश ना करें बट वो सही नहीं है आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी बहुत अहम है अगर लंबे समय के लिए जैसे जो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स चाहिए उसके लिए इक्विटी बहुत अहम है तो शुरुआती तौर पे मैं कहूँगा कि आप बहुत थोड़ा सा पोर्शन लीजिए और किसी भी एक प्लेन इंडेक्स फंड से शुरुआत कीजिए एक सेंसेक्स का फंड आप ले सकते हैं या फिर आप एक निफ्टी का फंड ले सकते हैं ये बहुत ही लो रिस्क इक्विटी फंड्स होंगे इन कंपैरिजन टू अदर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जहां पे फंड मैनेजर्स खुद पैसा मैनेज करते हैं ये वाले इंडेक्स फंड्स केवल और केवल मार्केट को रेप्लिकेट करेंगे बट इसका जो प्रपोर्शन है वो बहुत थोड़ा रखिएगा अपने पोर्टफोलियो का क्योंकि अभी आप एकदम शुरुआत कर रहे हैं और आमतौर पर एक जो आइडियल एलोकेशन होता है रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में वो अराउंड 30-40% होना चाहिए और वहीं पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप एक साथ लमसम इन्वेस्टमेंट मत करिएगा उससे बहुत ज़्यादा खतरा रहता है कि हम मार्केट के एक गलत लेवल पे एंटर ना कर जाए जैसे कि मान लीजिए आपने एक बड़ी पूंजी एक साथ इन्वेस्ट कर दी और ठीक एक हफ्ते बाद मार्केट नीचे गिर गया तो वो एक साथ पूरा पैसा नीचे आते हुए बहुत ज़्यादा एक इन्वेस्टर को एंग्जाइटी हो जाती है तो बजाय उसके अगर हम लोग तोड़ तोड़ के कुछ महीनों में स्प्रेड करके एक SIP के जरिए इन्वेस्ट करते हैं तो जो हमारा परचेज कॉस्ट है वो एक एवरेज आउट हो जाता है और उससे ये वाला जो रिस्क होता है ये काफी कम हो जाता है तो अगर एकदम मैं संक्षिप्त में बोलूं तो फिर आप एक सिंपल इंडेक्स फंड से शुरुआत कीजिए SIP के जरिए कीजिए और थोड़ा सा पैसा पहले निवेश करके देखिए
2: ऑल राइट लेट्स आस्क शंकर फ्रॉम भोपाल व्हाट हिज क्वेरी इज शंकर जी सवाल पूछें
9: नमस्ते सर आकाश जी नमस्ते
1: नमस्कार
9: सर मेरा सवाल है ह्यूज फंड्स कमिंग इनटू इक्विटी फंड में आ रहा है इंडिया में म्यूचुअल फंड के थ्रू जो पहले नहीं होता था तो इसका लॉन्ग पहले क्या था छोटे छोटे थोड़ा बहुत इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड तो आते लेकिन अभी हर कोई आने लगा है इसका प्रभाव हमारे मार्केट में और रिटर्न पे क्या पड़ेगा कि क्या अब हर कोई चीज महंगी होती जाएगी जैसे अमेरिका में हुआ था तो अमेरिका इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग गेटिंग फंड्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इन देयर मार्केट S&P and Nasdaq and they are seeing going through roof. So this is the same thing trend is going to continue or there is actually going to be an effect of performance of a company on the its value. And
1: I would say a huge amount of money coming into mutual funds is one of the function of the increasing awareness. So over the last few years there has been a great awareness इक्विटी में क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए एंड क्या बेनिफिट होता है लोग उसके बारे में ज़्यादा ज़्यादा जान रहे हैं और बहुत ज़्यादा ईजी होता जा रहा है इन्वेस्ट करना मोबाइल फ़ोन से कुछ बटन्स के थ्रू कुछ ऐप्स के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बट वहीं पर जो सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज है वो भी बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं तो इससे आई डोंट सी अ प्रॉब्लम कि कुछ किसी तरीके की दिक्कत होनी चाहिए इन्वेस्टर के लिए इनफैक्ट इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट और अच्छा हो रहा है है, उनको कहीं तरह के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उनको देखने के लिए, बट वहीं पर उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो रहा है कि उनको प्रोडक्ट चूज करना पड़ता है कि किस तरीके के फंड में निवेश किया जाए, बट अदरवाइज एज सच कुछ उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
4: और देखते हैं अब सोने और चांदी का हाल। इस हफ्ते सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। एमसीएक्स में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 2.6% की गिरावट आई और ये 1,43,478 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 6.2% गिरकर 2,22,664 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। कॉमेक्स में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 0.3% की गिरावट आई और ये $4,113.70 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुआ। इसी दौरान सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा लगभग 1.5% गिरकर $60.16 प्रति ट्रॉय आउंस पर बंद हुई।
2: और दिल्ली से केशव जी जुड़ चुके हैं। केशव जी सवाल पूछे।
10: हाँ जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर को कि जैसे कि जो आप यूडिट्स के बारे में बता सकते हैं, अगर किसी ने यूडिट ले भी लिया हो तो उसमें से बाहर निकलना कितना, किस तरह से निकला जाए अगर उसने ले भी लिया तो, यूडिट में क्या क्या नुकसान होते हैं? और दूसरा, एक एजेंट से हमारी मीटिंग हुई थी, एजेंट ने हमें कुछ अपने अपने तरीके से अपने ही तरीके की कंपनियों में बात
1: केशव जी, जहाँ तक की मेरी जानकारी है, यूलिप्स में सबसे पहले तो 5 साल तक का लॉक इन पीरियड होता है कि जो पैसा आप उसमें निवेश कर चुके हैं उसके बाद नहीं निकला जा सकता। बट हाँ, आपके पास एक ऑप्शन जरूर है कि आप आगे आने वाले प्रीमियम्स जो है उसमें आप ना दे, और बल्कि अगर आप जाके एक इंश्योरेंस कंपनी में रिक्वेस्ट करेंगे, वहाँ पे अपना फॉर्म देंगे, तो फिर जो आपका फंड में पैसा है, अगर भले ही लॉक इन भी पीरियड में भी होगा, वो उसको उठा करके एक सरेंडर पोर्टफोलियो उनका होता है वहाँ पर डाल देंगे, जिसमें कि आपको इंटरेस्ट काफ़ी कम मिलेगा लेकिन आपका पैसा वहाँ से निकला रहेगा और आगे आने वाले प्रीमियम आपके जो आप भरेंगे वो बंद हो जाएंगे। आमतौर पे यूलिप इसलिए अच्छा नहीं रहता क्योंकि एक यूलिप जो है हाइब्रिड प्रोडक्ट होता है, ये क्लेम करता है कि आपको इंश्योरेंस भी देगा इन्वेस्टमेंट भी देगा, लेकिन आमतौर पर ये दोनों में ही सक्षम नहीं उठ पाता। इंश्योरेंस के लिए जो एक कवर देता है ये बहुत ही कम देता है। एक यूलिप यूजली जो आपका एक एनुअल प्रीमियम होता है उसका 10 times का कवर देता है, यानी कि अगर आप 1,00,000 रुपये भरेंगे तो ये आपको 10,00,000 का लाइफ कवर देगा, जो कि आमतौर पर काफ़ी कम रहता है। वहीं पर एक प्योर टर्म प्लान लिया जाए तो 1,00,000 का कवर कुछ अराउंड 12,000 से 15,000 रुपये सालाना में मिल जाता है। और बात करें इसके इन्वेस्टमेंट पोर्शन की, तो उसके हिसाब से ये काफ़ी एक महंगा प्रोडक्ट रहता है। इसके बाद वहीं पर एक आपका सवाल था कि एजेंट से किस तरीके से डील की जाए। सो देखिए, वहाँ पे मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो मुझे सही लगता है कि आप उनसे क्वेश्चंस पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछिए, हर चीज़ के जो रिवॉर्ड्स है उसके बजाय उसका रिस्क जानिए और फिर डिसीजन लीजिए।
2: All right, let's take a look at how our markets are expected to show up next week. The domestic markets are expected to take cues from the first quarter corporate earnings results, geopolitical developments, commodity prices, foreign investor activity, progress in monsoon and currency trends in this week. Market participants will closely track key economic indicators, including retail and wholesale inflation data, import-export figures and employment data. Meanwhile, the primary market is set to remain active this week with two upcoming main board IPOs. SBI Funds Management Limited and Alpine Texworld Limited are scheduled to launch their public issues on July 14, with the bidding window closing on July the 16th. Globally, investors will closely monitor geopolitical developments surrounding the West Asia conflict, US consumer price data index, the South Korean Central Bank's interest rate decision and the OPEC monthly oil market report.
4: हाँ, काफी गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। आकार, कुछ कहना चाहेंगे आप इस पे?
1: देखिए, इस वक्त जो बहुत जरूरी है वो ये है कि अपने जो फाइनेंशियल प्लान है, जो एक इन्वेस्टमेंट प्लान है इन्वेस्टर के लिए, उस पे टिके रहिए और डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करें, पैनिक ना करें।
4: जी आगाज वक्त इतना ही है, कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
2: Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. Foreign portfolio investors turn net buyers after 4 months, infuse more than 15,000 crore rupees into Indian equities so far in July. Situation in West Asia intensifies as Iran once again shuts

11:40 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर स्वागत है आप सबका। प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत आपके साथ मैं विकास।

1975 की यह फिल्म थी और फिल्म का नाम था जूली, और किशोर कुमार साहब और लता जी की ये बेहद खूबसूरत सी आवाज़ थी। अगली जो पेशकश आप तक पहुंचती है वो पहुंचती है पर्दे पर, आपको दिखते हैं देवानंद और फिल्म का नाम है हीरा पन्ना। 1974 की ये फिल्म है और बेहद बेहद खूबसूरत सा संगीत।

तमन्ना तो मेरी भी थी कि कुछ और देर आपके साथ बना रहूं, कुछ और गीत आप तक पहुंचाऊं, लेकिन घड़ी बता रही है कि विकास अब जाने का वक्त स्टूडियो से हो चुका है, इस वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल, उनका ख्याल जो रखते हैं आपका ख्याल। विकास को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुस जलडोमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुस जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। देशभर में पौधे लगाने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने के लिए प्रति चिंतित है।
2: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर GDP में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आज से कर रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने चीन के ओरडोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने कल अंतिम दिन 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इस बार बीमा सेक्टर के बारे में बात की है और ये भी बताया है कि किस तरह से दुर्घटना के समय जो बीमा राशि मिलती है वो हमारा बहुत बड़ा संबल बनती है और किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग दुर्घटना के समय या फिर उससे पहले छोटी छोटी जो प्लानिंग्स करते हैं वो हमें बहुत ज्यादा साथ देती है, हिम्मत देती है, जीवन में आगे बढ़ने का संबल उसी से हमें प्रदान होता है। तो प्रधानमंत्री जी ने जिस सेक्टर का जिक्र किया है हम कितना जानते हैं इसके बारे में और क्या हमारे मन में सवाल हैं, उन सबके जवाब आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। पहले मैं अपने विशेषज्ञों का परिचय आपसे करवा देती हूँ। इस विषय के बारे में हम ज्यादा जानेंगे, हमारे विशेषज्ञ हमें बताएंगे। हमारे साथ हैं श्री अशोक चंद्र, आप प्रबंध निदेशक हैं, मुख्य अधिकारी हैं पीएनबी बैंक से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
3: धन्यवाद मैडम।
2: हमारे साथ हैं श्री कुलभूषण शर्मा जी, आप जीवन बीमा निगम से हैं, रीजनल मैनेजर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हमारे साथ डिप्टी जनरल मैनेजर हैं SBI से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, श्री ह्यूबर्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में।
5: थैंक यू मैडम।
2: श्री अशोक कुमार हैं, आप AGM हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, सहायक महाप्रबंधक। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत।
6: थैंक यू मैम।
2: तो ऐसा करते हैं श्रोताओं, सबसे पहले हम मन की बात का वो हिस्सा सुनते हैं जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीमा क्षेत्र का जिक्र किया है, दुर्घटना बीमा का उल्लेख किया है।
7: मेरे प्यारे देशवासियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपए के सालाना प्रीमियम पर 2,00,000 रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को

0: बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई। कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें।
1: तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उल्लेख किया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का उल्लेख किया और साथ ही हमें प्रेरित किया कि इस क्षेत्र के बारे में हमारी जानकारी और बढ़े। तो इनके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आइए साथियों, पहले बात करते हैं दुर्घटना बीमा की। छोटा कदम बड़ा बदलाव कैसे बनता है, हमारे विशेषज्ञ हमें बताएंगे। और मैं सबसे पहले अशोक चंद्र जी आपसे ही जानना चाहूंगी कि अगर हम दुर्घटना बीमा की बात करते हैं तो नाम थोड़ा सा डराता है, ऐसा लगता है कि कोई दुर्घटना हो जाए उसके बाद हमें कुछ राशि मिलेगी तो दुर्घटना ही क्यों हो। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन में हम इन चीजों से बच भी नहीं सकते, जब बुरा समय आता है तो बताकर नहीं आता। और ऐसे में जहां हमें संगी साथियों की, परिजनों की जरूरत पड़ती है, वहीं जरूरत पड़ती है कुछ धनराशि की भी जो हमें हौसला दे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आम नागरिकों के जीवन में लाइफ इंश्योरेंस जो है उसका क्या महत्व है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने जिक्र किया, आई थिंक माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 जून 2026 के मन की बात कार्यक्रम में दो चीजों का उन्होंने उल्लेख किया, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना और प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना। और ये दोनों जो स्कीम्स हैं ये लोगों की लाइफ से जुड़े हुए हैं, और किसी तरीके की अनहोनी अगर होती है आपके लाइफ में तो आपके परिवार को कैसे एक आर्थिक मदद मिले, उसके अंतर्गत ये दोनों कार्यक्रम, दोनों जो स्कीम्स हैं उसके भीतर आती हैं। और इसके माध्यम से आई थिंक बहुत बड़े सेक्शन को कंट्री के भीतर, पॉलिसीज के भीतर, जीवन बीमा के भीतर हम उनको कवर कर सकते हैं, और उनको एक किसी भी चैलेंजेस अगर आती हैं लाइफ में तो उसको हम उनके माध्यम से मदद कर सकते हैं
1: जी।
2: और इसका इम्पोर्टेंस यह है कि देखिए, लाइफ में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वित्तीय सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा लाइफ का एक पहलू होता है, जीवन सुरक्षा जिसको हम बोलते हैं। और उसके अंतर्गत ये जो एक स्कीम है प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें 18 साल से 50 साल के लोगों को 436 रुपए में 2 लाख तक के इंश्योरेंस कवर दिए जाते हैं, और वैसा ही है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, जिसके अंतर्गत 20 रुपए में आप किसी भी तरीके की अगर दुर्घटना हो जाती है, और दुर्घटना से आप अगर डिजेबल हो जाते हैं या आप असामयिक देहांत हो जाता है तो उसमें भी आपके जो परिवार वाले हैं जिसको आपने नॉमिनेशन किया है उनको भी 2 लाख का ये मदद मिलता है। इस कार्यक्रम को मैं इससे देखता हूं कि जब आप 12 साल पहले अगर जाएं, 2014 में जब फाइनेंशियल इंक्लूजन कंट्री के भीतर स्टार्ट किया गया, वित्तीय समावेशन जिसे हम बोलते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना का विस्तार किया गया, जिसमें आज करीब 56 करोड़ लोग बैंक की प्रणाली से जुड़े हैं
1: जी,
2: और उसमें करीब 2,67,000 करोड़ की डिपॉजिट उन स्कीम्स में मौजूद है, तो उसको ही आगे कैसे ले जाया जाए, उन लोग जो बैंक के से जुड़े और बैंक में खाता उन्होंने खोला, तो बैंक का खाता खोलना तो एक इमीडिएट एक रिक्वायरमेंट थी और उसमें हम लोगों ने उसमें मदद की लोगों को खाता खोलने में, लेकिन उसको और आगे लेकर कैसे जाएं, उसमें ये जो दो स्कीम्स हैं जो सुरक्षा आपको प्रोवाइड करती हैं उसको आगे ले जाने का प्रयास स्कीम्स के माध्यम से किया जा रहा है। और मेरा इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर अनुरोध होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन दो स्कीम से जुड़े। आई थिंक इतनी कम राशि में आपको 2 लाख का इंश्योरेंस कवरेज
1: जी,
2: एक तो दुर्घटना के लिए और एक जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं वो
1: जी,
2: आई थिंक किसी भी इंश्योरेंस स्कीम में नहीं मिल सकती है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इन स्कीम्स के साथ जुड़े और इन स्कीम्स का लाभ उठाएं
1: जी। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कुलभूषण शर्मा जी, जब हम बात करते हैं वित्तीय समावेशन की, ऐसे में हमारे देश में जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो स्थापित काम कर रहा है, उनके लिए फिर भी ये बात सरल लगती है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जिनका बहुत ही संगठित क्षेत्र में जो काम नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वित्तीय समावेशन में क्या हम उन्हें भी शामिल कर रहे हैं इन पॉलिसीज के थ्रू?
3: मेरे विचार में वित्तीय समावेशन में जब जीवन बीमा के हितलाभों को जोड़ा गया तो शायद प्रधानमंत्री महोदय अपने एक दीर्घकालिक एजेंडा के तहत ग्रामीण क्षेत्र को या उन क्षेत्रों को जोड़ना चाहते थे जिनको इंश्योरेंस कंपनीज टारगेट नहीं कर रही थी, उनका लक्ष्य नहीं ले रही थी, क्योंकि माना यह जाता था कि उनकी भुगतान योग्य क्षमता कम है, इसलिए कम राशि में बीमा किया गया। मेरे विचार में शायद हमारे देश की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे सस्ती ग्रुप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और 20 रुपए में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी शायद पूरे विश्व की सबसे सस्ती इंश्योरेंस पॉलिसी होगी।
1: जी,
3: जहां तक ग्रामीण क्षेत्र का सवाल है, मुझे लगता है हमें अपने लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी मानव का अपने परिवार के लिए दो प्रकार का मूल्य है। पहला भावनात्मक, जो कोई किसी का माता है, पिता है, बेटा है, बेटी है। दूसरा है उनका कोई ना कोई वित्तीय मूल्य है, जिसे हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू में आंकते हैं, मानव जीवन मूल्य के आधार पर। मैं जितना अपने परिवार के लिए कमा के देने वाला हूँ वो मेरा मानव जीवन मूल्य है। अगले 10 वर्ष में मैं कितना कमाने वाला हूँ ये मेरे मानव जीवन मूल्य का आंकलन हो सकता है। और मान लीजिए मेरी अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो मेरे परिवार को एक वित्तीय क्षति होती है जिसके लिए बीमा समाधान उपलब्ध है। 2 लाख का बीमा समाधान सस्ता है, लेकिन ये जानने की आवश्यकता है कि क्या 2 लाख पर्याप्त है। इसलिए शायद दो संदर्भ में इसको किया गया। 2 लाख का जो जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ है
1: जी,
3: उसमें हमने किसी भी प्रकार की मृत्यु को कवर किया है, और दुर्घटनावश मृत्यु के लिए हमने 20 रुपए में 2 लाख का और कवर किया है। ये प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस है, और इसके बारे में हम जितनी जागरूकता फैलाएंगे उतना बढ़िया होता जाएगा। और आज के डेट में अगर हम आंकड़ों के आधार पर बात करें तो वित्तीय सेवाएं विभाग की तरफ से जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं नवंबर 2025 के अनुसार 25 करोड़ 79 लाख लोग इस बीमा योजना से जुड़ चुके हैं
1: जी।
3: अभी तक 10,02,628 मृत्यु दावों का भुगतान किया गया है, जो विश्वास बढ़ाता है इस प्रणाली में कि बीमित लोगों को जब भी इस तरह का कोई अकस्मात इमरजेंसी आएगा तो भुगतान किया जाएगा
1: जी। तो भरोसा बढ़ता है इससे। यहाँ अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पिछले कुछ वर्षों से अगर हम तुलना करें तो भारतीय बीमा बाजार में आप क्या बड़े बदलाव देख रहे हैं? अब लोग इंश्योरेंस को लेकर थोड़ा अवेयर हुए हैं क्या? और जिस तरह से अर्निंग को लेकर बहुत कॉशियस रहते हैं, वैसे सेविंग्स के साथ साथ क्या इंश्योरेंस की तरफ भी उनका ध्यान बढ़ा है? क्या कहेंगे आप?
4: धन्यवाद नीलम जी। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में कहा था कि पीएमजेजेवाई और पीएमएसवी ये भी इंश्योरेंस की एक स्कीम्स हैं जो कि अफोर्डेबल कीमत पे लोगों को उपलब्ध आती हैं
1: जी।
4: तो ये जो हमारा वित्तीय समावेशन है कि भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाने का सपना है तो इसमें हर नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने पर जोर देना पड़ेगा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इसे हासिल करने के लिए उन्होंने वित्तीय समावेशन का नियम फार्मूला लाए
1: जी।
4: इसको उपयोगी कैसे करें, वित्तीय समावेशन क्या है, कैसे इसको ले आ पाए? तो वित्तीय समावेशन का मतलब है कि उपयोगी और किफायती वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, जैसे बैंकिंग, ऋण, बीमा, डिजिटल भुगतान, खासकर कमजोर वर्गों और कम आय वाले समूह के लिए उचित लागत पर
1: जी,
4: कम से कम उनको खर्च करना पड़े। भारत में वित्तीय समावेशन के तहत जो बीमा योजना उपलब्ध है उसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों इसमें उपलब्ध हैं। आप अगर इसको देखें कि अभी तक हमारे पास 31 मार्च 26 तक हमारे देश में कितना पीएमजेजेवीवाई और कितना पीएमएसवीवाई लोगों को उपलब्ध हुआ है
1: जी,
4: तो पीएमजेजेवीवाई 23,35,00,000 ये फिगर है जो अभी तक हमारे देश में 31 मार्च 26 तक दी जा चुकी है
1: जी।
4: पीएमएसवीवाई 53,97,00,000 इतने लोगों को ये सुविधा उपलब्ध है। टोटल इसको अगर इस तरह से देखें कि इसमें पीएमजेजेवाई और एसबीआई पूरे जो समूह है उसमें बैंक और पोस्ट ऑफिस सभी इसको उपलब्ध कराते हैं, तो सभी को टोटल मिला के ये संख्या उपलब्ध कराई है। इसमें हमारे एसबीआई का अगर आप शेयर देखें
1: जी,
4: तो लगभग पूरे बैंकिंग क्षेत्र में हमारा 35% का शेयर है और 30% का शेयर पीएमएसबीवाई में है। इसको अगर समझें कि पीएमजेजेवाई क्यों जरूरी है, तो पीएमजेजेवीवाई इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है लोगों के लिए, कोई सामाजिक सुरक्षा स्कीम हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए या कम निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए हमारे भारत में उपलब्ध नहीं है। और अगर उनका कोई व्यक्ति जो मेन कमाने वाला घर का मुखिया होता है उसकी किसी कारण से दुर्घटना होने पे या दुर्घटना होने पे उसका किसी तरह की क्षति होती है, मान लीजिए कि उसका आधा पैर हाथ या इस तरह की दुर्घटना में उसको जो काम करने की है उसकी क्षति होती है, तो उसको कोई बीमा किसी तरह का नहीं मिलता है। इसी तरह अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के लिए कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं होती है। और हमारे देश में ज्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्र में या निम्न आय वर्ग के लोग हैं जिनके पास इस तरह की कोई सुरक्षा बीमा उपलब्ध नहीं है
1: जी।
4: तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो की थी, ये पूरी तरह लाइफ इंश्योरेंस है और इसमें सिर्फ 436 रुपए एनुअल प्रीमियम है। वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है। इसको भुगतान करके कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है। उसके साथ सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उसका बैंक में खाता होना चाहिए
1: जी,
4: ये उसकी कंडीशन है। और 436 रुपए में लेने के बाद एक साल के लिए उसको 2,00,000 रुपए का बीमा पूरे एक साल के लिए मुफ्त है कि अगर उसके साथ कुछ भी घटित होता है
1: जी
4: तो उसका 2,00,000 रुपए उसके नॉमिनी को प्राप्त हो जाए
1: जी। तो मैं अशोक जी अब आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग और जो निम्न आय वर्ग है उन्हें इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या महानगरों में रहने वाले जो लोग हैं जो कि इसी तरह का असंगठित क्षेत्रों में जो काम करते हैं या श्रमिक हैं, मजदूर हैं, क्या वो भी इसका लाभ ले सकते हैं?
2: या बिल्कुल, इस स्कीम में केवल एक ही क्राइटेरिया है, आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए
1: जी,
2: और एज जो है प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना के भीतर 18 साल से 50 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए, और अगर आपने ये लिया हुआ है तो 55 साल तक आप इसको अवेल कर सकते हैं
1: जी।
2: दूसरा, इसमें और कोई किसी भी तरीके के प्रतिबंध नहीं लगे हुए हैं, और जैसा कि हमारे शर्मा जी ने भी बताया आपको कि बहुत ही सुगम है, बहुत ही सरल है, और इतने कम रुपए में आप कोई ऐसी स्कीम के अंतर्गत आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं
1: जी।
2: मैं देख रहा था कि 436 रुपए जीवन ज्योति बीमा योजना के भीतर है और 20 रुपए जीवन सुरक्षा बीमा योजना के भीतर है, और अगर आप चाहें तो दोनों आप एक साथ ले सकते हैं, तो टोटल आपकी जो खर्च होती है वो 456 रुपए खर्च होता है
1: जी।
2: आप 365 दिन से अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो 1 रुपए 24 पैसे, 1.25 रुपए में आपको ये स्कीम 2,00,000 का कवरेज आपको मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि जितने लोग हैं और जिस आयु वर्ग में 18 से 50 साल के इस ग्रुप में है, आई थिंक उनको तो ये जीवन ज्योति बीमा योजना तो लेना ही चाहिए, और ये गांव में तो है ही, शहर में भी है, इनफैक्ट सारे सर्विस सेक्टर में भी जो लोग काम कर रहे हैं हम लोगों ने खुद लिया हुआ है
1: जी।
2: मैंने अपना खुद इंश्योरेंस कवरेज दोनों स्कीम में लिया हुआ है, तो इसका लाभ तो हमारे देश के सारे नागरिक इसका लाभ ले सकते हैं, और यही इसकी खूबसूरती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको लें और एक सुरक्षा कवच के रूप में एक अपने नॉमिनीज को प्रोवाइड करें
1: जी। जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही कम हमें इसके लिए भुगतान करना है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि छोटा कदम बड़ा बदलाव, कि बहुत ही छोटा सा अमाउंट एक देना होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कुलभूषण जी, जैसा अभी सर ने बताया अशोक चंद्र जी ने कि हम लोग जो सर्विस सेक्टर में हैं हम भी ले सकते हैं, मैं जानना चाहूंगी आप डिटेल में इस बारे में बताएं कि एक परिवार में क्या ऐसा कोई नियम है कि एक ही व्यक्ति ले सकता है, जो परिवार का मुखिया है वही ये बीमा ले सकता है, और इसके लिए क्या कोई आय प्रमाण पत्र जमा करवाना होता है, क्या प्रक्रिया है?
3: जहां तक प्रधानमंत्री योजनाओं का संदर्भ है, दोनों ही योजनाओं में किसी प्रकार का आय का प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ता
1: जी।
3: किसी भी प्रकार का सदस्यों के रूप में संख्या का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई भी व्यक्ति जिसके पास खाता है, जो खाता धारक है, वो उसे ले सकता है
1: जी।
3: केवल एक शर्त है, एक व्यक्ति एक से ज्यादा बार ये लाभ नहीं ले सकता। जैसे मान लीजिए कोई ग्राहक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उनका खाता है और पीएनबी में भी खाता है, तो दोनों जगह से 2,00,000 का वो बीमा नहीं ले सकता
1: जी।
3: इसके अलावा और कोई भी इस पे किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, परिवार के अगर 10 सदस्य हैं तो 10 के 10 अगर वो खाता धारक हैं
1: जी
3: तो बीमा ले सकते हैं, और प्रीमियम देने की दशा में प्रीमियम की कटौती होना पर्याप्त है मृत्यु की दशा में बीमा राशि देने के लिए। इसके अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं मांगते। हाँ, मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जाता है, नामांकित व्यक्ति का केवाईसी मांगा जाता है जिसमें उनका आधार कार्ड वैध है और उनके खाते का होना, और खाते को नेफ्ट किया जाएगा, सीधा ग्राहक के खाते में पहुंचता है पैसा, उसका पंजीकरण किया जाना आवश्यक होता है। केवल इतनी ही शर्तें इस पे लागू हैं
1: जी। अगर उन्होंने पहले से प्राइवेट सेक्टर में कोई बीमा लिया है तो क्या वो एक अवरोधक है या उसके साथ ही बीमा लिया जा सकता है?
3: चाहे उन्होंने निजी क्षेत्र में लिया हो या सरकारी क्षेत्र में लिया हो
1: जी,
3: अगर पीएमजेजेवाई के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का बीमा लिया गया है तो उसकी इस पे कोई भी बाध्यता नहीं है। ये 2,00,000 का बीमा राशि पीएमजेजेबीवाई में और 2,00,000 की बीमा राशि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में उपलब्ध है
1: जी। अशोक जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, इंश्योरेंस सेक्टर में पिछले दिनों आपने क्या ऐसा बड़ा बदलाव देखा है? क्या अब आपको ऐसा लग रहा है कि युवा भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं और वो जागरूक हैं बीमा के बारे में?
4: बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया नीलम जी आपने। जैसा कि आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से गुजरा है
1: जी।
4: तो जब कोरोना में बहुत सारे हमारे देशवासियों की मृत्यु भी हुई और बहुत सारे लोगों का अपना कार्ड छूटा, तो इन परिस्थितियों में ये जिसने जीवन ज्योति बीमा योजना में पहले से नामांकन किया था हमारे देशवासियों ने, उनके परिवारों को कुछ आर्थिक मदद मिली, तो इसमें नामांकन करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोनों में जितना अधिक से अधिक लोगों ने नामांकन किया है उसी हिसाब से उसी रेशियो में कंपनियों ने उनको भुगतान किया। और इसमें भुगतान का जो रेशियो है वो काफी अच्छा है
1: जी।
4: इसमें क्लेम तुरंत हो जाता है और बहुत समय नहीं लगता, लगभग एक माह के अंदर क्लेम नॉमिनी को मिल जाता है। पहले मैं इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा डिटेल से आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कौन एनरोलमेंट कर सकता है, कैसे कर सकता है और कितनी उम्र तक ये वैलिड है
1: जी।
4: तो इसमें जीवन ज्योति बीमा योजना ये पूरी तरह से बीमा योजना है। इसमें किसी भी कार्ड से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का कवर प्रदान करती है। इसमें कुछ नहीं पूछा जाता कि मृत्यु कैसे हुई। इसका प्रीमियम मात्र 436 रुपए है, साल भर के लिए है। अगर किसी ने बीच में प्रीमियम लिया है तो उसको प्रोरोटा पे वो कम हो जाता है
1: जी।
4: और 1 जून से 31 मई हर साल उसके लिए वैलिड होती है। इसका जो प्रीमियम है वो ऑटो डेबिट माध्यम से मई के 31 मई के आसपास आपके खाते से डेबिट होता है। तो सभी भाइयों ने जिन्होंने अभी तक स्कीम ली है उनसे अनुरोध है कि वो कृपया ये सुनिश्चित करें कि जब भी मई महीने में इसका रिन्यूअल आए तो अपने खाते में सफिशियंट बैलेंस रखें
1: जी।
4: क्योंकि अगर एक बार रिन्यूअल में पैसा नहीं कटा तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, तो फिर से आपको पॉलिसी लेनी पड़ेगी। तो पहला तो इसमें ये ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा, इसमें जो एनरोलमेंट कर सकते हैं, जैसा कि सर ने बताया था कि 18 से 50 वर्ष की उम्र का कोई भी व्यक्ति जिसका बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता है वो इसमें एनरोल कर सकता है। ये स्कीम 55 साल तक लागू रहती है। अगर आपने 18 से 50 साल के बीच में एनरोलमेंट कर लिया है तो स्कीम का लाभ आप 55 साल की उम्र तक ले सकते हैं। इसमें सभी प्रकार के खाते कवर होते हैं। बैंक में आपका ओडी है, केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड है, सेविंग बैंक है, चालू खाता है, सभी खाते इसमें कवर है। आपका बैंक में खाता होना चाहिए। जो इसकी पॉलिसी है उसमें एक 30 दिन का कूलिंग पीरियड रहता है कि अगर उस पीरियड में कुछ बात होती है तो उसके बाद आपको वो पैसा मिलेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो जाए इसमें एनरोलमेंट कर लेना चाहिए
1: जी।
4: दुर्घटना की स्थिति में ये तुरंत लागू हो जाता है, जैसे ही आपने किया है ये उसी दिन से इफेक्टिव हो जाएगा। अब बात करते हैं सुरक्षा बीमा योजना की। तो सुरक्षा बीमा योजना ये एक तरह से पूरी तरह दुर्घटना बीमा योजना है। इसमें किसी भी प्रकार से आकस्मिक मृत्यु होने पर या विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए का कवर प्रदान करती है
1: जी।
4: इसका प्रीमियम मात्र 20 रुपए है, साल भर का प्रीमियम मात्र 20 रुपए है। और इसमें 18 से 70 वर्ष के बीच का कोई भी व्यक्ति ले सकता है, सब्जेक्ट टू कि उसका खाता बैंक में या पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए
1: जी।
4: ये आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता दोनों को कवर प्रदान करती है। 18 से 70 वर्ष के जो भी खाता धारक हैं और किसी भी तरह का उनका बैंक में खाता है, केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड है या चालू खाता है, बचत खाता है, वो इसके लिए एलिजिबल है, वो इसमें तुरंत एनरोलमेंट करा सकते हैं
1: जी।
4: ये पॉलिसी भी 1 जून से 31 मई तक के लिए वैलिड होती है और मई महीने में इसका फिर से रिन्यूअल प्रीमियम आपके खाते से डेबिट होता है
1: जी।
4: तो उसको आप सफिशियंट अपना मई महीने में बचत रखें जिससे कि आपके खाते से उसका प्रीमियम डेबिट हो सके
1: जी।
4: इसमें 2 लाख का कवर है जो एक्सीडेंटल केस में है और इसका क्लेमेंट बड़ा ही सिंपल है। इसको आप जैसे ही किसी की मृत्यु होती है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के और उसके कारण के साथ कि किस कारण से मृत्यु हुई है आप उस बैंक में दे दें, तो वो सब इंश्योरेंस कंपनी को भेज देते हैं और वहां से क्लेम नॉमिनी को मिल जाता है। इसमें एक चीज जो हमने नोटिस की है वो हम कहना चाहेंगे कि जब भी इस कंपनी में, इस इंश्योरेंस स्कीम में जब भी कोई व्यक्ति नॉमिनी करे तो ध्यान रखे कि अपनी नॉमिनी का नाम ध्यान से उसमें भरे
1: जी।
4: क्योंकि कई बार देखा गया है कि जब नॉमिनी का नाम होता है तो पहले कई बार गलत भर दिया जाता है जिसको सुधारने में फिर काफी समय लगता है। सो इसका ध्यान रखना है कि जब इंश्योरेंस पॉलिसी ले तो जो भी आपकी नॉमिनी है उसका नाम ठीक से भरा जाए
1: जी। ये आपने पूरी प्रक्रिया हमें समझाई और बहुत ही सरल तरीके से आपने समझाई है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता जो अब विचार कर रहे होंगे ये बीमा लेने के लिए, उन्हें पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। और जो हमारे हेल्प करते हैं रोजमर्रा के जीवन में, हमारे घर में जो काम के लिए आते हैं, चाहे हमारे ड्राइवर भैया है, मालिका का है, तो हम ऐसे लोगों को भी बताएं इसके बारे में, क्योंकि उनके लिए बेहद उपयोगी ये होगा। और जो जानकारी है उससे हमें पता चलता है कि बहुत ही सरल तरीके से ये बीमा लिया जा सकता है। अशोक चंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी, सर अक्सर लोग ये कहते हैं कि कोई भी पॉलिसी जब हम लेते हैं तब उसमें शुरुआत में तो बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और बड़े अच्छे से समझा दिया जाता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है उस पैसे की, तो एक तो अगर वो दुर्घटना बीमा है या मृत्यु बीमा भी है, तो होता यह है कि एक तो परिवार वैसे ही दुखी है, परेशान है, मनोबल उनका बहुत कम है, और उसमें हिडन क्लॉजेस भी सामने आते हैं, निजी क्षेत्र में अक्सर ऐसा देखा जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या इस तरह का कोई लूप होल, क्या कमी इस पॉलिसी में भी है, इन योजनाओं से जुड़ी है?
2: नहीं, इनफैक्ट इस स्कीम की यही ब्यूटी है
1: जी,
2: कि जितना ये सरल है इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए, उतना ही सरल है इसके कोई भी क्लेम अगर आते हैं तो उसके निपटारा के लिए भी
1: जी।
2: और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो भी दोनों स्कीम के अंतर्गत जो इंश्योरेंस ली जाती है, चूंकि ये बैंक के माध्यम से होता है, जैसा कि हमारे सारे पैनलिस्ट ने बताया आपको कि खाता होना आपका जरूरी है, बैंक में खाता होना चाहिए, और बैंक के खाते में ही इसका प्रीमियम जो है वो डेबिट होता है, और बैंक एक मीडियम है जो ये फैसिलिटी आपको इंश्योरेंस की प्रोवाइड करता है। तो इसमें किसी भी तरीके के जो क्लेम होते हैं तो हमारे बैंक के जो साथी हैं वो उसकी पूरी प्रोसेसिंग करते हैं, और प्रोसेसिंग करके और रिस्पेक्टिव इंश्योरेंस कंपनीज में उसको दाखिल करते हैं, और बैंक पूरा सहयोग करता है इसमें, इसको निपटारा करने के लिए। और जैसा कि अभी चर्चा में आया कि क्लेम सेटलमेंट अगर देखा जाए तो 99% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है इसमें
1: जी,
2: प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना में, और करीब 97% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना में। तो इसमें किसी भी तरीके की शंका और कठिनाई आप नहीं समझे कि इंश्योरेंस तो मिल गया लेकिन आगे क्लेम सेटलमेंट कैसे होगा, बहुत ही सरल है, और ये प्रायोरिटी में आता है हमारा, चूंकि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक पार्ट है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का ये पार्ट है, तो बैंकों का भी दायित्व तो बनता है इसमें, और इंश्योरेंस कंपनीज का भी दायित्व तो बनता है
1: जी,
2: कि इसको कैसे जल्दी से इस तरीके के कोई सेटलमेंट क्लेम आए हैं तो उसको निपटारा किया जाए
1: जी। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कुलभूषण शर्मा जी, आमतौर पर ऐसा होता है कि हम जब भी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो बेहद सरल लगता है कोई भी भुगतान करना, या अब पेमेंट हमें जब आती है तो बहुत खुशी होती है, लेकिन साथ ही एक साइबर फ्रॉड जो है, साइबर क्राइम्स जो हैं, उसका जोखिम भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में जब ये बीमा योजना जो है पूरी तरह से बैंकिंग प्रणाली पर ही निर्भर है, तो आपको क्या लगता है कितना सुरक्षित ये पूरा कार्य है, और छोटी छोटी बचत जो लोग अपनी जोड़कर देंगे और मुसीबत के लिए उस समय के लिए वो अपना धन संचय करते हैं कि जरूरत के समय हमें काम आए, क्या इसमें इस तरह का कोई डर जुड़ा है साइबर फ्रॉड का?
3: बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में फ्रॉड होने की संभावना, इससे इनकार नहीं किया जा सकता
1: जी।
3: पीएमजेजेवाई या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो इससे जुड़ी संस्थाएं हैं उनके ढांचे में ये पूर्ण व्यवस्था की गई है कि ऐसे फ्रॉड को रोका जा सके और फ्रॉड ना हो। दोनों के सहयोग से अगर ग्राहक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है
1: जी,
3: तो फ्रॉड की संभावना नगण्य अथवा शून्य हो जाती है। मेरे विचार में इस क्षेत्र में अगर हम दोनों योजनाओं की बात करें, हमारा जो ग्राहक है वो बहुत अधिक इंटरनेट अथवा मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और भुगतान की विधि हमने नेफ्ट के द्वारा रखी है
1: जी,
3: तो हमारी साझी जिम्मेवारी बनती है बीमाकर्ता की और बैंक की कि नेफ्ट का जो सही आंकड़े हैं उनकी प्रविष्टि की जाए, उनको भली प्रकार जांच लिया जाए, और क्योंकि ये पैसा सीधा जो बेनिफिशियरी है उसके खाते में जाने वाला है, फ्रॉड को रोका जा सकता है। मेरे विचार में यहाँ उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ग्राहक को हम दोनों कंपनीज पे भरोसा करना चाहिए, जिस बीमा कंपनी से उन्होंने बीमा लिया है या जिस बैंक से उन्होंने अपना खाता रखा है
1: जी।
3: दोनों ही सुदृढ़ हैं इस मामले में, जागरूक हैं, ग्राहक उन्मुखी हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो
1: जी। और क्योंकि इसमें ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी शामिल नहीं है कि वो बहुत ही लालच कुछ दे कि हम बहुत कम समय में आपको ये प्रोविडेंट देंगे, ये लाभ देंगे, तो वो जोखिम भी कम हो जाता है, इसमें भरोसा बनाए रखा जा सकता है। अशोक जी, आपसे जानना चाहूंगी, ग्रामीण क्षेत्रों में हम कई बार इस तरह की घटनाओं के बारे में सुनते हैं कि किसी को सांप ने काट लिया, उसकी वजह से मृत्यु हो गई, या बिजली गिरी है कहीं पर, या किसी घर का निर्माण हो रहा था, छत ढह गई है, बारिश या भूकंप में इस तरह की दुर्घटना हुई। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस दौरान जबकि डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं हैं और घर का माहौल भी जो है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, तो कैसे मदद होती है इन योजनाओं के माध्यम से।
4: धन्यवाद नीलम जी, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। आज के जमाने में ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं रहता कि जब इस तरह की दुर्घटना उनके साथ हो जाए तो वो किस तरह इसके साथ डील करें। तो पहला तो ये कि दुर्घटना में अगर मृत्यु होती है किसी भी कारण से होती है तो जीवन ज्योति बीमा योजना में कवर मिलता है। तो उसके लिए सिर्फ हमें मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति है जिसका बीमा किया गया है उसके मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, तो वो बनवाने के लिए तुरंत उसका प्रयास करना चाहिए। दूसरा जो सवाल आपका था कि जो सुरक्षा बीमा योजना

0: बीमा योजना भी 2 लाख का मिलेगा और जीवन बीमा योजना भी 2 लाख का मिलेगा। तो अगर दुर्घटना से किसी व्यक्ति की मृत्यु, सांप के दसने से, बिजली, आकाशीय बिजली गिरने से या उसका मकान रहने से हुई है तो उस केस में उस व्यक्ति को 2+2 4 लाख रुपए का क्लेम बैंक से और जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे पास हो जाए।
1: जी, और कितनी समय सीमा के भीतर ये मिलता है या कितने दिन का समय उसे दिया जाता है ताकि परिजन स्वयं को संभाल सके, क्योंकि कुछ समय उन्हें अपने लिए भी चाहिए होता है, तुरंत वो क्लेम के लिए नहीं आ सकते, तो कितना समय उनके पास होता है?
0: सो इसमें देखिए, 1 महीने का समय मिलता है कि हम कम से कम 1 माह में उसको जितनी जल्दी सहायता करें उतना अच्छा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो 1 माह या 2 माह या 3 माह में नहीं कर पाए तो क्लेम उसको नहीं मिलेगा। जब उसको पता चले उसके डोमिनी को कि हमारा इंश्योरेंस था, पति का उसके खाते से पैसे कटे हैं, तो जैसे ही उसको पता चले वो इन कागजों के साथ बैंक में संपर्क करें। दूसरा क्या है, इसमें हम लोग भी मदद करते हैं कि हमारा काफी नेटवर्क है। आप जानते हैं कि बैंक में न सिर्फ ब्रांचें हैं, हमारे ग्राहक सेवा केंद्र भी हैं। तो हमारा जो नेटवर्क है, हम उन लोगों को, चूंकि ग्राहक सेवा केंद्र गांव में रहता है और एक गांव के लगभग काफी लोगों को वो परिचित होता है, तो जैसे ही किसी की मृत्यु होती है जो हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का प्रतिनिधि है उसको पता चल जाता है, तो वो उसको मदद करता है कि इन्होंने जीवन बीमा लिया था, इन्होंने सुरक्षा बीमा योजना लिया था, तो वो उसके कागज बनवाने में भी मदद करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम सबमिट कराने में बैंक को भी मदद करते
1: हैं। यानी सुओ मोटो एक्शंस भी हैं, मदद की जाती है।
0: यस
1: जी। यहाँ ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर बीमा लेते वक्त अपना नॉमिनी नहीं किसी ने रजिस्टर किया है, उसकी जानकारी नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या होता है?
0: ये जो हमारी सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसमें प्री कंडीशन है नॉमिनी का नाम देना। जब भी हम बीमा एनरोल करते हैं उसी समय नॉमिनी का नाम उसमें डालना आवश्यक है। तो ऐसी परिस्थिति नहीं है कि उसमें नॉमिनी नहीं मिले। बस गलती कई बार ये हो जाती है कि चूंकि फॉर्म अक्सर अंग्रेजी में भरे जाते हैं तो स्पेलिंग में कई बार लोगों से गलतियां हो जाती है, या लोग कुछ बुलाते हैं घर पे कुछ और, कई बार उस नाम को भर देते हैं, बट नॉमिनी उसमें डालना कंपलसरी है, उसके बिना बीमा आज की तारीख में नहीं मिलता है। तो इस तरह की कोई शिकायत इसमें नहीं है।
1: जी, आपसे जानना चाहूंगी सर, प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए हैं, विशेष तौर से महिलाओं के लिए हैं, छोटे छोटे समूह में महिलाएं ग्रुप इंश्योरेंस भी ले रही हैं। ऐसे में जो महिलाएं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं और कभी कभी वो अपने घर पर भी नहीं बताना चाहती हैं अपनी बचत के बारे में, कई बार इस तरह की परिस्थितियां होती हैं, तो क्या इसमें किसी विटनेस की भी जरूरत होती है जब वो बीमा लेती हैं? किसी के सिग्नेचर चाहिए होते हैं साथ में, या ग्रुप इंश्योरेंस का भी कुछ इसमें हो सकता है?
2: नहीं, इसमें कोई विटनेस की आवश्यकता नहीं है। ये सेल्फ इंड्यूस्ड फॉर्म होता है और उसमें खुद वो अपना डिटेल्स भरे जाते हैं इसमें, और बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है जैसा कि अभी बताया गया आपको। और सेल्फ हेल्प ग्रुप में तो बहुत ही अच्छा है, जितनी महिलाएं उसके भीतर ग्रुप के भीतर काम कर रही हैं, आई थिंक सारी महिलाएं इस दोनों स्कीम्स का लाभ उठा सकती हैं। और आज के डेट में अगर हम देखें तो पूरे इंडिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में हम देखते हैं इसको। और उसमें अगर इसको सुरक्षा के मद्देनजर भी अगर ये लाभ भी उनको प्रोवाइड की जाए बैंकों के माध्यम से या अवेयरनेस कैंपेन के माध्यम से उनको इसमें भी जोड़ दिया जाए तो एक बहुत बड़ी क्रांति देश के भीतर हो सकती है। देखिए, आज जो भारत के भीतर स्थिति है, आई थिंक 4-5% इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में है, और जब हम विकसित भारत 2047 की कल्पना कर रहे हैं और उसके भीतर हम काफी काम कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी गांव-गांव तक होना चाहिए। और उसमें ये जो प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके माध्यम से हम जो लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, उनको अवेयर करने का प्रयास करते हैं कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। ये दो स्कीम्स का तो लाभ उनको मिलता ही है, लेकिन इसके माध्यम से उनको ये भी जानकारी मिलती है कि हमें आगे और भी किसी तरीके के इंश्योरेंस कुछ लेने की जरूरत है, आवश्यकता है, तो एक बहुत बड़ा रोल विकास के दर में काम करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये।
1: और कंपनियां जो हैं, जो कि कुछ इम्प्लॉयज के साथ में काम कर रही हैं, वो हायर करते हैं टैलेंट को, क्या कंपनी अपनी तरफ से उनका इंश्योरेंस करवा सकती है या ये इंडिविजुअल लेवल पर?
2: नहीं, ये होता तो इंडिविजुअल लेवल पे ही होता है, उनके बैंक के खाते से ही होता है। और अभी तो जीवन सुरक्षा पोर्टल डेवलप हो गई है जिससे किसी भी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन नहीं हो, मिस सेलिंग नहीं हो, कस्टमर के कंसेंट लेने के बाद ही इसको, दोनों पॉलिसीज को लोगों को मुहैया कराई जाए। और उसके लिए अभी जीवन सुरक्षा पोर्टल में आप लोग अप्लाई करते हैं और उसमें बैंक के जो साथी हैं उसमें मदद करते हैं, और उसके बाद उनके कंसेंट के बाद ही ये पॉलिसी ली जाती है। लेकिन जरूर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज को मदद करना चाहता है तो वो जो प्रीमियम

0: पे कर रहा है उतनी प्रीमियम राशि वो रीइंबर्स कर सकता है उनको। और आई थिंक बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ये काम भी कर रहे हैं उनको ये इसका लाभ प्रोवाइड करने के लिए, पूरी जो प्रीमियम है वो रीइंबर्स कर देते हैं, उनके खाते में वो क्रेडिट कर देते हैं, ये किया जा सकता है इसमें।
1: जी ये किया जा सकता है जी। कुलभूषण शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी, जीवन बीमा निगम के बारे में तो भारत में बहुत सारे लोग जानते हैं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी ये जो ध्येय वाक्य है ये लोगों को रटा हुआ है। ऐसे में जब हमारे बैंक्स भी अब बीमा प्रणाली से जुड़ रहे हैं तो कई बार भारत में, क्योंकि इतना विशाल देश है और भौगोलिक विशेषताएं हमारी हैं लेकिन विविधताएं भी हैं उसमें, कई जगह स्थानीय बैंक भी होते हैं जो कि सरकारी बैंक नहीं है, निजी क्षेत्र पर कार्य कर रहे हैं और वो एक छोटे से एरिया को कवर करते हैं। क्या वो इस तरह का बीमा जो है वो करवा सकते हैं या ये योजना वो उपलब्ध करवा सकते हैं, एंटाइटल हैं वो?
2: नीलम जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि आमतौर पर धारणा ये है कि निजी बैंक या जो कोऑपरेटिव बैंक हैं शायद अच्छा काम नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी बैंक हैं वो आरबीआई के द्वारा नियंत्रित हैं, वो नियामक है, उनके द्वारा ही उनको लाइसेंसिंग किया जाता है। तो यहाँ ये कहना उचित नहीं होगा कि छोटे बैंक या निजी बैंक उस परिधि में नहीं आते हैं। मैं उत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो सेंट्रलाइज हब है उसका प्रभारी हूँ। मेरे पास इस समय लगभग 130 छोटे बड़े बैंक्स हैं जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का हमारे साथ MOU साइन करके कार्य कर रहे हैं। उनका कार्य भी बहुत अच्छी प्रकार से चल रहा है और अखिल भारतीय स्तर पे पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक, ये हमारे उत्तर क्षेत्र LIC से जुड़े हुए हैं जिनका पूरे भारत का कार्य करने का तरीका हम देख रहे हैं। कहीं भी हमारी नजर में ऐसा कुछ नहीं आया है कि किसी निजी बैंक ने या किसी सरकारी क्षेत्र के बैंक ने इसमें कुछ त्रुटिपूर्ण कार्य किया हो। तो लोगों को पूरा भरोसा होना चाहिए, हमारी जो भी राजकीय व्यवस्थाएं हैं वो बहुत बहुत सक्षम हैं और जितने भी नियामक हैं वो अपना कार्य भली प्रकार कर रहे हैं। और ये तो योजना ही सरकार की है और इसमें वित्तीय सेवाएं विभाग हमारे मॉनिटर के रूप में काम करता है, समय समय पर इसकी समीक्षाएं की जाती हैं, जो भी आंकड़े हैं उस पे अनुसंधान किया जाता है।
1: जी
2: अगर कुछ ऐसा होता तो आज तक पकड़ में आया होता, तो मुझे लगता है कि हम भरोसा दिला सकते हैं देश की जनता को कि ये जो भी प्रणाली है एकदम बढ़िया कार्य कर रही है और वो चिंता मुक्त होके हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी बैंक हो, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, सबको जो लाइसेंस दिया गया है वो एक प्रक्रिया के अंतर्गत दिया गया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत उनका उत्तरदायित्व भी बनता है। यहाँ मैं एक नामांकन के बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। नामांकन क्योंकि आवश्यक है तो हम चिंता मुक्त हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है दुर्भाग्यवश जिस व्यक्ति को नामांकित किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उस स्थिति में मेरा अनुरोध रहेगा कि जो भी इसका बीमा धारक है वो अपना नामांकन परिवर्तन करा ले, क्योंकि अगर नामांकन नहीं है वैध रूप से तो मृत्यु की दशा में पैसा किसको दे, ये बैंक के लिए एक संकट की स्थिति उत्पन्न करता है और उसके लिए जो नियम है वो बहुत बहुत सख्त हैं। या तो एक ससेक्शन सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है जो न्यायालय से मिलता है और उसमें बहुत समय लगता है, या बैंकिंग प्रणाली में एक और है सर्टिफिकेट ऑफ लीगल हीयर्स, उनके जो भी वारिसों का एक प्रमाण पत्र बनाया जाता है उसको बनाना पड़ता है। तो अंग्रेजी में कहते हैं स्टिच ऑन टाइम इज बेटर। तो अगर हम पहले से ही ध्यान रखें, वैध नॉमिनेशन रखें, वैलिड नॉमिनेशन रखें और नॉमिनी की अगर मृत्यु हो जाती है तो तुरंत नया नॉमिनी निर्धारित कर दें, तो ये भुगतान देने में दोनों संस्थाओं को भी आसानी होगी और जो पात्र व्यक्ति है उसको लाभ भी समय अनुसार मिल पाएगा, क्योंकि मृत्यु दावा का भुगतान समय अनुसार होना बहुत आवश्यक है।
1: जी, और जो नॉमिनी है उसकी उम्र कुछ भी हो सकती है, वो नाबालिग भी हो सकती है।
2: अगर नाबालिग है, मान लीजिए किसी परिवार में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वालिग नॉमिनी नहीं है, तो उसके लिए एक अपॉइंटी को नियुक्त किया जाता है जो उसके साथ मिलके प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है।
1: जी, अभी कुछ समय पहले आपने डेटा बताया कि पूरे देश में इसका लाभ उठा रहे हैं लोग, बेहद जागरूक हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग बढ़ चढ़कर बीमा योजना में हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं ह्यूबर्ट सर आपसे जानना चाहूंगी, नॉर्थ ईस्ट का किस तरह का एक्सपीरियंस है? वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग?
3: थैंक यू मैडम फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। सी, इंडियाज विजन बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन डिपेंड्स ऑन एम्पावरिंग एवरी सिटीजन।
1: जी,
3: इकोनॉमिकली फाइनेंशियली एम्पावरमेंट। अ डेवलप्ड नेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन ईच एंड एवरी सिटीजन इज फाइनेंशियली स्ट्रांग, फाइनेंशियली एम्पावर्ड। वी एज अ बैंकर, as an insurance company, as a post office, we are working on it so that each and every nook and corner of India, the financial accessibility is there. We are working on it so that each and every individual, whether you are in the rural area, extreme corner of in the northeast, extreme corner in the southwest,

0: that financial accessibility should be there. We are working on it. That is one of the prime goal of our this one. That is financial inclusion. We want each and every individual citizen of India should be financially inclusion, financially strong, economically strong, so that India becomes a developed nation.
1: Ji.
0: We specifically in Northeast, yes, there are difficult terrain, there are difficult road condition, where financial accessibility is very difficult, where we cannot reach to the villages, which is far away where there is no proper accessibility.
1: Ji.
0: But still then, we try our best as a financial sector, as an insurance company, post office. We ensure that the financial services, banking services, insurance services is reached to the corner by way of opening customer service points, by way of giving these mitras from time to time. Post offices, postmen are reaching there. So not only in Northeast, in other parts, there are also difficult centers. But still then, we are doing our best so that India, everyone is economically strong. Everyone is, the financial services is reached to each and every citizen of India. This is like as a banker, as a financial services, we are working on it.
1: Ji, thank you so much for sharing it. और जैसा कि प्रधानमंत्री जी कहते भी हैं, जिसे पहले भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, वो भारत का पहला गांव है माणा. और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हाशिए पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक हम जन सेवा जो है वो पहुंचाना चाहते हैं, सुविधाएं पहुंचाना चाहते हैं, यही ध्येय है. तो ये जो योजनाएं शुरू की गई हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इनका लाभ इसी प्रकार से मिलता रहे सभी को. हम आमतौर पर जब दुर्घटना की बात करते हैं, मृत्यु की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जब हम बीमा ले रहे हैं, यानी हम किसी परिजन की मृत्यु की कामना कर रहे हैं. लेकिन ये भावना नहीं है. ये योजनाएं जो हैं, हमें ये बताती हैं कि जब बहुत कठिन समय है, जब चाहकर भी हमारे अपने परिजन कुछ नहीं कर पाते हैं, किसी दुख की घड़ी में, जब दुर्घटना के समय शारीरिक दुख वो साझा नहीं कर सकते किसी का, और अचानक जब किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है तो उसे टाला नहीं जा सकता, उस समय के लिए मानसिक रूप से हम खुद को तैयार करें, लेकिन आर्थिक रूप से हमें सक्षम बनाए रखने के लिए ये योजनाएं इंट्रोड्यूस की गई हैं. और इसीलिए प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे बैंक और हमारा बीमा क्षेत्र इस तरह से काम कर रहा है कि देश के कोने कोने तक इनका लाभ पहुंचे. और यही उद्देश्य आकाशवाणी का, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से इस बारे में जागरूकता फैले और लोगों को पता चले कि वो स्वयं भी इसका लाभ ले सकते हैं. और हमारे जो हाउस हेल्प हैं, हमसे जुड़े हुए ऐसे लोग जो असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, निम्न आय वर्ग से हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनको भी हम समझाएं कि किस तरह से इसका लाभ लिया जा सकता है. क्योंकि कोरोना ने भी हमें सिखाया है कि कब एक छोटी सी मदद बहुत बड़ी हो सकती है और कब बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी मिलकर हमें वो संबल नहीं दे पाती जो कोई एक व्यक्ति एक सही समय पर आकर हमें देता है. तो यही उद्देश्य हमारे इस कार्यक्रम का भी. हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम से आपको इन योजनाओं के बारे में और बीमा क्षेत्र के बारे में काफी कुछ जानने समझने को मिला होगा. मैं आकाशवाणी परिवार की ओर से सबसे पहले तो अपने विशेषज्ञों का यहाँ पर धन्यवाद करूंगी. इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ रहे हमारे साथ श्री अशोक चंद्र, आप प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक से. हमारे साथ थे श्री कुलभूषण शर्मा, आप जीवन बीमा निगम क्षेत्र से रीजनल मैनेजर आप हैं. श्री ह्यूबर्ट, डिप्टी जनरल मैनेजर उप महाप्रबंधक आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के. और श्री अशोक कुमार, आप सहायक महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से. श्री अशोक चंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने इतनी आवश्यक बातें हमें बताई, हमें जरूरी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए.
2: बहुत बहुत धन्यवाद.
1: श्री कुलभूषण शर्मा जी, आपने जीवन बीमा निगम के बारे में भी बताया, लेकिन आपने ये भी बताया कि कैसे परस्पर भरोसा जो है वो रखा जाना चाहिए इस पूरी प्रणाली में. और छोटी छोटी चीजें जो हम बीमा योजना लेते समय पूरा करें, उस कागज को कैसे हमें भरना है, वो कैसे हमारे लिए जरूरी है, ये आपने हमें समझाया. जैसे नॉमिनी के बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी.
3: बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी.
1: अशोक कुमार जी, आपने बहुत अच्छे से सारा डेटा हमारे सामने रखा और हमें बताया कि किस प्रकार से इनका लाभ लिया जा सकता है, क्या पूरी प्रक्रिया है, कैसे इनरोल करना है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. ह्यूबर्ट सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमें ज्वाइन करने के लिए.
0: धन्यवाद.
1: मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आपसे अनुमति लेती हूँ. आज का हमारा कार्यक्रम दुर्घटना बीमा, छोटा कदम बड़ा बदलाव, कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ और कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स के साथ. मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार.
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि हुर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौवहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि हुर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर भी हवाई हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। देश भर में पौधे लगाने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने कल एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से चिंतित है।
2: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर GDP में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आज से कर रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने चीन के ओरडोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ सम्पन्न किया। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 6 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। New Delhi has reiterated its call for immediate de-escalation of tensions in West Asia region after attack on a commercial ship GFS Galaxy carrying Indian crew members off the coast of Oman yesterday. Condemning the attack, the External Affairs Ministry said that out of 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one is reportedly missing. The ministry said the Indian embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. New Delhi also expressed concern over the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region. It also reiterated the call for conclusion of ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. The mortal remains of the 15 Indian tourists who lost their lives in Saturday's boat capsize incident near Phu Quoc Island in Vietnam were taken to Ho Chi Minh City. The Indian embassy in Vietnam informed that the mortal remains will be transported to India at the earliest after the completion of necessary formalities in Ho Chi Minh City. It added that the embassy and the consulate general are closely monitoring with the Vietnamese authorities and assured all the possible assistance to facilitate the early transportation of the mortal remains to India. Uttar Pradesh created a new benchmark in environment conservation by planting 35 crore 27 lakh saplings in a single day under the Ek Ped Maa Ke Naam campaign yesterday. This is 27,89,000 more than the government's target of 35 crore. Chief Minister Yogi Adityanath launched the statewide Vrikshadopan Mahayagya Drive from Gorakhpur by planting the sacred Triveni saplings. Home Minister Amit Shah also launched a massive tree plantation drive in Gandhinagar, Gujarat, which saw the planting of over 1.25 crore saplings across his Lok Sabha constituency. Addressing the Vriksh Mitra program and Paryavaran Sanrakshan Sankalp event in New Delhi, Union Minister Shivraj Singh Chauhan emphasized that planting trees is extremely important for protecting the environment and ensuring a sustainable future.
4: As temperatures continue to rise, the climate crisis will only deepen. Estimates suggest that if the current trend continues, climate change could reduce global GDP by as much as 20% by the end of this century. The resulting economic crisis could be so severe that recovering from it would become extremely difficult. Therefore, if greenhouse gas emissions continue at their current pace by the year 2050, the Earth will face serious environmental, economic and social challenges.
3: Former Qatar Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, who transformed the Gulf nation into a major global player in diplomacy, media and investment, has died at the age of 74. India has declared one-day national mourning today as a mark of respect for Father Emir of Qatar. Prime Minister Narendra Modi has expressed condolences at the demise of Father Emir of Qatar. The External Affairs Ministry has said that Parliamentary Affairs and Minority Affairs Minister Kiran Rijiju is visiting Qatar to convey condolences on behalf of the Government of India to the State of Qatar. Five Indian students have won gold medals at the 56th International Physics Olympiad IPHO 2026, which was held at Bucaramanga in Colombia from the 4th to 12th of this month. These young physicists have brought immense pride to the nation by delivering an extraordinary performance. Afghanistan's Minister of Agriculture, Irrigation and Livestock, Maulvi Atullah Umari, concluded his six-day visit to India. During the visit, the Afghan minister met with Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan. India reiterated its commitment to supporting Afghanistan's agricultural sector through cooperation in climate-resilient and biofortified crop varieties, sustainable irrigation practices, water harvesting, watershed development and other areas of mutual interest. Wicketkeeper batter Yastika Bhatia became the first woman to score a test century at Lord's before India's bowlers tightened their grip on the historic one-off women's test against England. Resuming the penultimate day with an overall lead of 269, India declared their second innings at 341 for 7. In reply, England slumped 230 for 6 at stumps, with Amy Jones unbeaten on 52, leaving India just 4 wickets away from a memorable victory. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 9 सेकंड। गीत सुहानी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा जी की आवाज़ के साथ।

फिल्म बहु बेगम से सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और आशा जी की। ये फिल्म 1967 में प्रदर्शित हुई थी और इस फिल्म का निर्देशन किया था एम सादिक ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी प्रदीप कुमार, मीना कुमारी और अशोक कुमार ने। फिल्म का संगीत रोशन का था और गीत साहिर साहब ने लिखे थे। ये फिल्म रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में गाया हुआ गीत जो अभी हमने आपको सुनवाया, हम इंतज़ार करेंगे के लिए भी जानी जाती है। और इस फिल्म का संगीत दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया। और अब अगले गीत की तरफ बढ़ते

फिल्म पारसमणि से लता मंगेशकर की आवाज में सुना आपने ये गीत। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीतकार थे असद भोपाली। ये फिल्म आई थी 1963 में और इस ये एक संगीतमय फिल्म थी और इस फिल्म का निर्देशन किया था बाबू भाई मिस्त्री ने और ये फिल्म आर्थिक रूप से सफल रही थी और ये फिल्म संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पहली आधिकारिक रिलीज फिल्म थी और इस फिल्म को तमिल भाषा में मायामणि शीर्षक से 1964 में रिलीज किया गया था। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है महेंद्र कपूर की आवाज़ में, फिल्म बहारें फिर भी आएंगी।

फिल्म का नाम बहारें फिर भी आएंगी, आवाज़ महेंद्र कपूर की, संगीत ओपी नैयर साहब का और गीतकार शेवन रिजवी साहब। ये फिल्म आई थी 1966 में और इस फिल्म को निर्मित किया था गुरुदत्त साहब ने, निर्देशित किया था शहीद लतीफ़ ने और इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे माला सिन्हा, धर्मेंद्र, तनुजा और रहमान। इस फिल्म का संगीत ओपी नैयर साहब ने दिया था। और अब बढ़ते हैं हम अगले गीत की तरफ, अगला गीत शमशाद बेगम की आवाज़ में।

100.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:37 और 25 सेकेंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत आशा जी और शमशाद बेगम की आवाज़ में।

नया दौर से सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत शमशाद बेगम और आशा जी की आवाज में, दिलीप कुमार और वैजंती माला के अभिनय से सजी हुई ये फिल्म आई थी 1957 में और जिसे बनाया था बीआर चोपड़ा साहब ने, और इस फिल्म का संगीत आज भी दर्शकों द्वारा काफ़ी सराहा जाता है और बहुत ही चाव के साथ सुना भी जाता है। ये अपने ज़माने की बहुत सफल फिल्म रही थी और ये उस ज़माने की एक क्रांतिकारी फिल्म भी मानी जाती है, और मशीन बना मनुष्य को लेकर बहुत ही संवेदनशील ढंग से इस फिल्म को बनाया गया था। और ओपी नैयर साहब का पंजाबी पृष्ठभूमि पर आधारित संगीत इस फिल्म को और ज़्यादा लोकप्रिय बनाता है, और ज़्यादा ख़ास बनाता है। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म असली नकली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौवहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पहली अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ता अपराध प्रतिस्पर्धा का उद्घाटन करेंगे। श्री शाह कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नई सब्जी उप यार्ड का उद्घाटन भी करेंगे। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योग जगत के नेताओं के साथ व्यक्तिगत बैठकें भी करेंगे। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आज से करेगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में इटली के यानिक सेनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। सिनर 100 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले एकमात्र इतालवी पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले चीन की गुओ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टिना मिलाडेनोविक की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। New Delhi has reiterated its call for immediate de-escalation of tensions in West Asia region after attack on a commercial ship GFS Galaxy carrying Indian crew members off the coast of Oman yesterday. Condemning the attack, the External Affairs Ministry said that out of 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one is reportedly missing. The ministry said the Indian embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. New Delhi also expressed concern over the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region. It also reiterated the call for conclusion of ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. The mortal remains of the 15 Indian tourists who lost their lives in Saturday's boat capsize incident near Phu Quoc Island in Vietnam were taken to Ho Chi Minh City. The Indian embassy in Vietnam informed that the mortal remains will be transported to India at the earliest after the completion of necessary formalities in Ho Chi Minh City. It added that the embassy and the consulate general are closely coordinating with the Vietnamese authorities and assured all possible assistance to facilitate the early transportation to the mortal remains of the mortal remains to India. Uttar Pradesh created a new benchmark in environment conservation by planting 35 crore 27 lakh saplings in a single day under the Ek Ped Maa Ke Naam campaign yesterday. This is 27,89,000 more than the government's target of 35 crore. Chief Minister Yogi Adityanath launched the statewide Vriksha Ropan Mahayagya Drive from Gorakhpur by planting the sacred Triveni saplings. Home Minister Amit Shah also launched a massive tree plantation drive in Gandhinagar, Gujarat, which saw the planting of over 1.25 crore saplings across his Lok Sabha constituency. Addressing the Vriksha Mitra program and Paryavaran Sanrakshan Sankalp event in New Delhi, Union Minister Shivraj Singh Chauhan emphasized that planting trees is extremely important for protecting the environment and ensuring a sustainable future.
3: As temperatures continue to rise, the climate crisis will only deepen. Estimates suggest that if the current trend continues, climate change could reduce global GDP by as much as 20% by the end of this century. The resulting economic crisis could be so severe that recovering from it would become extremely difficult. Therefore, if greenhouse gas emissions continue at their current pace by the year 2050, the Earth will face serious environmental, economic and social challenges.
2: Former Qatar Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, who transformed the Gulf nation into a major global player in diplomacy, media and investment, has died at the age of 74. India has declared one-day national mourning today as a mark of respect for Father Emir of Qatar. Prime Minister Narendra Modi has expressed condolences at the demise of Father Emir of Qatar. External Affairs Ministry said that Parliamentary Affairs and Minority Affairs Minister Kiran Rijiju is visiting Qatar to convey condolences on behalf of the Government of India to the state of Qatar. In Thailand, a huge fire that engulfed a pub in Bangkok killed 27 people. Rescuers said the fire was reported around midnight. Footage shared online by first responders show huge blaze raging out of the front door of the pub in the northern part of the Thai capital as people tried to flee with thick black smoke pluming into the sky. Thailand Prime Minister Anutin Charnwirakul told reporters at the scene that 27 people died and several have been taken to the hospital. He said the cause of the fire is still under investigation. Five Indian students have won gold medals at the 56th International Physics Olympiad 2026, which was held at Bucaramanga in Colombia from the 4th to 12th of this month. These young physicists have brought immense pride to the nation by delivering an extraordinary performance. In tennis, top-seeded Italy's Yannick Sinner claimed the Wimbledon men's singles title by defeating second-seed Germany's Alexander Zverev tonight. Sinner also earned his 100th Grand Slam match win, and he is the only Italian man who has reached the milestone. India concluded its campaign at the Asian Under-23 Athletics Championship in Ordos, China, with 16 medals, including 3 gold, 4 silver and 9 bronze. And that is the end of this news bulletin.

नक्स की तरह उभरना तुम्ही से सीखा, नक्स की तरह उभरना भी तुम्ही से सीखा, रफ्तार रफ्तार नजर आना भी तुम्ही से सीखा। तुमसे हासिल हुआ एक गहरे समंदर का सुकून, और हर मौज से लड़ना भी तुम्ही से सीखा। अच्छे शेरों की परख तुमने ही सिखलाई मुझे, अपने अंदाज से कहना भी तुम्ही से सीखा। छोटी सी बात पे खुश होना मुझे आता था, छोटी सी बात पे खुश होना मुझे आता था, पर बड़ी सी बात पे चुप रहना तुम्ही से सीखा। नक्श की तरह उभरना भी तुम्ही से सीखा, रफ्तार रफ्तार नजर आना भी तुम्ही से सीखा। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12:35। शुरू हो चुका है प्रोग्राम रात सुरमई। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत और सदाबहार गीत के साथ। आवाज़ है तलत अजीज़ की।

वैसे ये बात तो सच है कि जब भी आपसे बातें होती हैं, जब भी आपसे मुलाकात होती है, तो ये ज़मीन चांद से बेहतर नज़र तो आती है, क्योंकि आप और हम जुड़ते हैं दिल से दिल तक। कितनी अजीब बात होती है ना कि हम अक्सर खुशियों को आसमान में, चांद सितारों में ढूंढते हैं, लेकिन जब ज़िंदगी में कोई ख़ास इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है, तो हमारी जो सूखी पड़ी हुई ज़मीन होती है खुशियों की, वो अचानक हमें जन्नत बन जाती है, हमें खुशी महसूस होने लगती है। कि आपके पास कोई ऐसा खास शख्स है जिसके साथ होने से दुनिया और खूबसूरत हो जाती है, अगर है तो फिर आपका थोड़ा इतराना तो बनता है। अगला गीत भूपेंद्र सिंह और सुरेश वाडकर की आवाज़ में, आप ही के लिए।

मोहब्बत अगर मुकम्मल हो तो फिर इतराना तो बनता है। और वैसे भी प्यार में जब कोई थोड़ा सा इतराता है तो गुस्सा नहीं आता, बल्कि दिल को और दीवाना बना देता है। अगर आज रात वो आपके पास हैं तो मुझे लगता है ये वक्त शायद यही गुनगुनाना चाहता है। अगला गीत उन्हीं के लिए।

ऐसा कहा जाता है कि जहाँ शब्द थक जाते हैं, जहाँ शब्द सीमित हो जाते हैं, वहाँ संगीत अपनी बात कहना शुरू करता है, क्योंकि संगीत अनंत है, असीमित है। मुझे जब मैं इस गाने को सुन रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी अनंत में बैठी हुई हूँ। वहाँ से खुद को वापस लेकर आना वाकई बहुत मुश्किल होता है। अगर इस गाने को सुनते हुए अगर आपने भी इसी तरह का कुछ महसूस कर रहे थे तो थोड़ी सी वॉल्यूम और बढ़ा लीजिए, क्योंकि अगला गाना भी सीधे आपके दिल तक पहुंचने वाला है।

वो रुला के हंस ना पाया देर तक, वो रुला के हंस ना पाया देर तक, जब मैं रो के मुस्कुराया देर तक। भूलना चाहा कभी उसको अगर, और भी वो याद आया देर तक। खुद ब खुद बेसाख्ता मैं हंस पड़ा, उसने इस दर्जा रुलाया देर तक। गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया देर तक। कल अंधेरी

के साथ आपकी रात की हमसफर मज्जू। वक्त हुआ है 2:41 और 57 सेकेंड। आप सुन रहे हैं रात सुरमई, ऐसी सुरमई रात जहां हम रात के जज्बात को, रात के दर्द को एक सुर में ढालने की कोशिश करते हैं, ठीक उस बांसुरी की तरह जो जीवन में संगीत देती है, जीवन में आवाज देती है। अगली गजल आप तक पहुंच रही है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में।

बस यही तो दिक्कत है कि मोड़ से जिंदगी कभी शुरू नहीं होती, बल्कि वहां से तो सिर्फ रास्ते बदलते हैं। सच कहूं, आपको तो मालूम ही है मैं जैसा सोचती हूँ समझती हूँ आपसे ज़रूर शेयर करती हूँ। जब मैं ये गज़ल सुन रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी में काश एक रिवाइंड बटन तो होना चाहिए था। काश एक बार तो जिंदगी, जैसा कहा गया है गज़लों में कहना शायद, या शब्दों में कहना बहुत आसान होता है, पर असल ज़िंदगी में जितना शब्दों में कह दिया उतना ज़िंदगी में कर गुज़रना बहुत मुश्किल होता है और शायद नामुमकिन होता है। क्योंकि आपको भी पता है ज़िंदगी सिर्फ पल दो पल की है, कल कोई और होगा, कल कोई और था। अगला गीत अभी के लिए।

साहिर साहब की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जो उन्होंने अपने वक्त उस दौर में महसूस किया, जिया, वो महसूस करना, वो जीना आज भी बेमानी नहीं लगता, आज भी वैसा ही महसूस किया जा सकता है। इस दुनिया के रंगमंच पर हम सब पल दो पल के मुसाफिर हैं। आज हम हैं, कल कोई और होगा, लेकिन इस छोटी सी जिंदगी का मज़ा भी तो यही है, जो पल हमारे पास है वही सच है, बिना इस फिक्र के कि कल क्या होगा, जो है आज ही है।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। आज ही के दिन आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हमराही प्रोग्राम लेकर आपके साथ रहेंगी अर्चना गोयल। मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौवहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद रखने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जल डमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पहली अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ता अपराध प्रतिस्पर्धा का उद्घाटन करेंगे। श्री शाह कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन भी करेंगे। इससे पहले गृहमंत्री ने कल अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से चिंतित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में MPTECH ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योग जगत के नेताओं के साथ व्यक्तिगत बैठकें भी करेंगे। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में इटली के यानिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। सिनर 100 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले एकमात्र इतालवी पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 6 विकेट पर 130 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर बनाकर घोषित कर दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। New Delhi has reiterated its call for immediate de-escalation of tensions in West Asia region after attack on a commercial ship GFS Galaxy carrying Indian crew members off the coast of Oman yesterday. Condemning the attack, the External Affairs Ministry said that out of 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one is reportedly missing. The ministry said the Indian embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. New Delhi also expressed concern over the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region. It also reiterated the call for conclusion of ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. The mortal remains of the 15 Indian tourists who lost their lives in Saturday's boat capsize incident near Phu Quoc Island in Vietnam were taken to Ho Chi Minh City. The Indian embassy in Vietnam informed that the mortal remains will be transported to India at the earliest after the completion of necessary formalities in Ho Chi Minh City. Uttar Pradesh created a new benchmark in environment conservation by planting 35 crores 27 lakh saplings in a single day under the Ek Ped Maa Ke Naam campaign yesterday. This is 27 lakh 89,000 more than the government's target of 35 crore. Chief Minister Yogi Adityanath launched the statewide Vriksharopan Mahayagya Drive from Gorakhpur by planting the sacred Triveni saplings. Home Minister Amit Shah also launched a massive tree plantation drive in Gandhinagar, Gujarat, which saw the planting of over 1.25 crore saplings across his Lok Sabha constituency. Addressing the Vriksh Mitra program and Paryavaran Sanrakshan Sankalp event in New Delhi, Union Minister Shivraj Singh Chauhan emphasized that planting trees is extremely important for protecting the environment and ensuring a sustainable future.
3: As temperatures continue to rise, the climate crisis will only deepen. Estimates suggest that if the current trend continues, climate change could reduce global GDP by as much as 20% by the end of this century. The resulting economic crisis could be so severe that recovering from it would become extremely difficult. Therefore, if greenhouse gas emissions continue at their current pace by the year 2050, the Earth will face serious environmental, economic and social challenges.
2: Former Qatar Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, who transformed the Gulf nation into a major global player in diplomacy, media and investment, has died at the age of 74. India has declared one day national mourning today as a mark of respect for Father Emir of Qatar. Prime Minister Narendra Modi has expressed condolences at the demise of Father Emir of Qatar. External Affairs Ministry has said that Parliamentary Affairs and Minority Affairs Minister Kiran Rijiju is visiting Qatar to convey condolences on behalf of the Government of India to the State of Qatar. In Thailand, a huge fire that engulfed a pub in Bangkok killed 27 people. Rescuers said the fire was reported around midnight. Footage shared online by first responders shows huge blaze raging out of the front door of the pub in the northern part of the Thai capital as people tried to flee with thick black smoke pluming into the sky. Thailand Prime Minister Anutin Chanvirakul told reporters at the scene that 27 people died and several have been taken to the hospital. He said the cause of the fire is still under investigation. Department of Administrative Reforms and Public Grievances DARPG in collaboration with the Government of Meghalaya is organizing a two-day national conference on the theme Next Gen Administrative and E-Gov Reforms in Shillong today. Union Minister Dr. Jitendra Singh and Meghalaya Chief Minister Konrad Sangma will address the inaugural session of the conference. The conference will bring together policymakers, administrators, technologists and governance practitioners from across the country to deliberate on the future of public administration and digital governance. In tennis, top seed Italy's Jannik Sinner claimed the Wimbledon men's singles title by defeating second seed Germany's Alexander Zverev tonight. Sinner also earned his 100th Grand Slam match win and he is the only Italian man who has reached the milestone. And that is the end of this news bulletin.

भीगी हुई फिजाओं में कुछ राज उतर आते हैं। दिल जब किसी को याद करे तो बादल भी बरस जाते हैं। मोहब्बत का मौसम भी कितना अजीब होता है, एक नाम सुनते ही चेहरे मुस्कुरा जाते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही और मैं हूं आज आपकी हम सफर अर्चना गोयल। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज की रात मौसम सुहावना है, ठंडी हवाओं ने मौसम को बेहद खूबसूरत बना दिया है। ऐसी रातें अक्सर दिल के बंद दरवाजों पर धीरे से दस्तक देती हैं। कुछ पुरानी यादें लौट आती हैं और कुछ अधूरे ख्वाब जाग जाते हैं और कुछ नाम बिना पुकारे ही होठों पर आ जाते हैं। कहते हैं अगर किसी की याद बारिश की पहली बूंद के साथ आए तो समझ लीजिए वो रिश्ता सिर्फ दिल का नहीं रूह का भी है।

परवीन सुल्ताना और मीनू पुरुषोत्तम की आवाज़ों में अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुना। फिल्म थी दो बूंद पानी। दोस्तों, मोहब्बत सिर्फ इजहार कर देने का नाम नहीं, मोहब्बत वो सुकून है जहाँ किसी की खामोशी भी समझ आने लगे, वहाँ किसी की मुस्कान देखकर अपना दिन रोशन हो जाए और किसी की उदासी देखकर बिना कहे दुआ निकल जाए। कभी बारिश बनकर बरस जाना, कभी खुशबू बनकर बिखर जाना, अगर याद हमारी आए तो बस मुस्कुरा देना, यही हमारी मोहब्बत का खूबसूरत अफसाना होगा।

जल बिन मछली और नृत्य बिन बिजली। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। दोस्तों, दिल की किताब में एक पन्ना तुम्हारे नाम का है, हर दुआ में जिक्र सिर्फ तुम्हारे नाम का है, बारिश की हर बूंद यही कहती है ये मौसम भी किसी के इंतजार का है।

0: आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, और हमराही के साथ मैं हूं आज आपके साथ अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 3:25:27।
1: ये

दोस्तों, जानते हो रिश्तों में सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? अपनापन। वो अपनापन जहां बातें कम हों लेकिन एहसास बहुत गहरे हों, जहां कोई ये पूछ ले कैसे हो तो उसमें भी पूरी मोहब्बत महसूस होती है।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये गीत था फिल्म प्यार का मौसम से। दोस्तों, बारिश की बूंद हमें ये सिखाती है कि आसमान से गिरने वाली हर बूंद अलग होती है, लेकिन धरती पर जाकर सब एक हो जाती है। ठीक वैसे ही दो अलग दिल जब सच्चे प्यार से जुड़ते हैं तो उनकी धड़कनों की आवाज़ भी एक जैसी लगने लगती है।

भीगी भीगी सी इस रात में एक बात याद आती है, हर गिरती बूंद के साथ तेरी मुस्कुराहट नजर आती है। दूर होकर भी तुम दिल के इतने पास हो कि हर धड़कन बस तुम्हारा ही नाम गुनगुनाती है।

दोस्तों, कुछ रिश्ते बारिश की बूंदों जैसे होते हैं। छूते तो पल भर को हैं, मगर महक उम्र भर छोड़ जाते हैं। और कुछ लोग दिल में ऐसे उतर जाते हैं कि हर मौसम उन्हीं का हो जाता है।

चलते चलते बस एक बात, न चांद की तमन्ना न सितारों की ख्वाहिश, बस इतना सा अरमान है इस दिल का कि जब भी बारिश हो तुम्हारी याद मुस्कुरा कर मेरे साथ चल पड़े।

इसी खूबसूरत गीत के साथ ही अब हमराही कार्यक्रम से मुझे यानी अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति। नमस्कार, आपसे फिर मुलाकात होगी 4:10 पर कार्यक्रम अरुणिमा में। तब तक आइए सुनते हैं समाचार हिंदी और अंग्रेजी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौवहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पहली अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ता अपराध प्रतिस्पर्धा का उद्घाटन करेंगे। श्री शाह कृषि उपज बाजार के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उप यार्ड का उद्घाटन भी करेंगे। इससे पहले गृहमंत्री ने कल अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में MPTECH ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आज से करेगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में इटली के यानिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। सिनर 100 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले एकमात्र इतालवी पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 6 विकेट पर 130 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। New Delhi has reiterated its call for immediate de-escalation of tensions in West Asia region after attack on a commercial ship GFS Galaxy carrying Indian crew members off the coast of Oman yesterday. Condemning the attack, the External Affairs Ministry said that out of 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one is reportedly missing. The ministry said the Indian embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. New Delhi also expressed concern over the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region. It also reiterated the call for conclusion of ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. The mortal remains of the 15 Indian tourists who lost their lives in Saturday's boat capsize incident near Phu Quoc Island in Vietnam were taken to Ho Chi Minh City. The Indian embassy in Vietnam informed that the mortal remains will be transported to India at the earliest after the completion of necessary formalities in Ho Chi Minh City. Uttar Pradesh created a new benchmark in environment conservation by planting 35 crore 27 lakh saplings in a single day under the Ek Ped Maake Naam campaign yesterday. This is 27,89,000 more than the government's target of 35 crore. Chief Minister Yogi Adityanath launched the statewide Vriksharopan Mahayagya drive from Gorakhpur by planting the sacred Triveni saplings. Home Minister Amit Shah also launched a massive tree plantation drive in Gandhinagar, Gujarat, which saw the planting of over 1.25 crore saplings across his Lok Sabha constituency. Addressing the Vriksh Mitra program and Paryavaran Sanrakshan Sankalp event in New Delhi, Union Minister Shivraj Singh Chauhan emphasized that planting trees is extremely important for protecting the environment and ensuring a sustainable future.
3: As temperatures continue to rise, the climate crisis will only deepen. Estimates suggest that if the current trend

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा। रोज इसी समय हम आपको सुनवाते हैं सकारात्मक भाव के गीत जिसमें जुड़ी होती है प्रार्थनाएं, और इसी भाव के साथ आज मैं आपके साथ अर्चना गोयल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं भगवान की प्रार्थना से, क्योंकि ईश्वर ही वो माध्यम है जो हम सबके जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नई मुस्कान लेकर आते हैं। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

हरिओम शरण और नंदिनी शरण की आवाज़ में अभी आपने ये भक्ति गीत सुना। दोस्तों, कहते हैं कि हर सुबह हमें ये याद दिलाने आती है कि बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज एक नया अवसर हमारे सामने है और इस नई सुबह में हमें अच्छे अच्छे विचारों को अपनाना है और दिन को खुशहाल बनाना है।

हेमंत कुमार की आवाज में ये गीत था फिल्म काबुलीवाला से। दोस्तों, जीवन में खुश रहने का सबसे बड़ा मंत्र है, जो हमारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करें और जो पाना है उसके लिए पूरे मन से प्रयास करें। आइए इस खूबसूरत सुबह की वो शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत के साथ जो जीवन में नई उम्मीद जगाता है।

गीत के बाद आपका अरुणिमा कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। दोस्तों, सुबह केवल घड़ी का एक समय नहीं होती, बल्कि सोच बदलने का भी समय होती है। यदि दिन की शुरुआत मुस्कान से हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा और मैं हूं आज आपके साथ अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 4:31:34। दोस्तों याद रखिए, सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं बल्कि हर परिस्थिति में अच्छाई देखने की आदत है। आज किसी एक व्यक्ति की मदद कीजिए, किसी को मुस्कान दीजिए या किसी का मनोबल बढ़ाइए। यकीन मानिए आपका दिन और भी सुंदर हो जाएगा।

0: दोस्तों, सुबह की ठंडी हवा, चिड़ियों की आवाज़ें और धीमे धीमे अंधेरे का रोशनी में बदलना, यानी आसमान का धीरे धीरे रंग बदलना, ये हमें ये संदेश देता है कि प्रकृति भी बिना थके अपना काम कर रही है। इसलिए हम इंसान को भी लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए।
1: उठ सबके कदम।

तो हर दिन अच्छा बन जाता है। और अच्छा दिन बनाने के लिए अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना, कृतज्ञता और मुस्कान के साथ की जाए तो हम बेहतर से बेहतरीन बन सकते हैं। साथ ही भरोसा रखिए ईश्वर पर और कर्म करते रहिए।

और अब वक्त है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है अरुणमा की ये बातें आपके मन में नया आत्मविश्वास जगाने में सफल रही होंगी। याद रखिए, हर सुबह जीवन हमें एक कोरा पन्ना देती है, उस पर क्या लिखना है ये हमारे हाथ में होता है। इसी सोच के साथ अरुणिमा कार्यक्रम संपन्न करने की मुझे यानी अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौवहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जल डमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पहली अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ता अपराध प्रतिस्पर्धा का उद्घाटन करेंगे। श्री शाह कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन भी करेंगे। इससे पहले गृह मंत्री ने कल अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में इटली के यानिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। New Delhi has reiterated its call for immediate de-escalation of tensions in West Asia region after attack on a commercial ship GFS Galaxy carrying Indian crew members off the coast of Oman yesterday. Condemning the attack, the External Affairs Ministry said that out of 11 Indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while one is reportedly missing. The ministry said the Indian embassy in Oman is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. New Delhi also expressed concern over the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region. It also reiterated the call for conclusion of ongoing negotiations for a diplomatic solution so that peace and stability can return to the region. The mortal remains of the 15 Indian tourists who lost their lives in Saturday's boat capsize incident near Phu Quoc Island in Vietnam were taken to Ho Chi Minh City. The Indian embassy in Vietnam informed that the mortal remains will be transported to India at the earliest after the completion of necessary formalities in Ho Chi Minh City. Union Minister of Cooperation Amit Shah will inaugurate the new vegetable sabyard during the Amrit Mahotsav of the Agricultural Produce Market Committee APMC in Gandhinagar, Gujarat today. According to the Ministry of Cooperation, during the program, Mr. Shah will plant sapling under the Ek Ped Ma Ke Naam campaign and release a commemorative publication prepared to mark the Amrit Mahotsav of the APMC. During the event, Mr. Shah will also interact with the members of the Dahegam APMC board. Uttar Pradesh created a new benchmark in environment conservation by planting 35 crore 27 lakh saplings in a single day under the Ek Ped Ma Ke Naam campaign yesterday. This is 27 lakh 89 thousand more than the government's target of 35 crore. Chief Minister Yogi Adityanath launched the statewide Vriksharopan Mahayagya Drive from Gorakhpur by planting the sacred Triveni saplings. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will lead a high-level Indian business delegation to Spain, Belgium and Finland from today till the 17th of this month. The Ministry of Commerce and Industry said that the visit aims to strengthen India's economic partnerships with Europe, with a focus on trade, investment, technology, innovation and sustainability. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani on the 26th of July. It will be the 136th episode of the monthly radio program. People can submit their ideas and suggestions for the program through the toll-free number 1-800-117-800. They can also share their input online via the Narendra Modi app or the MyGov open forum. The citizens can also give a missed call on 1922 and follow the link received in the SMS to directly give their suggestions to the Prime Minister. Suggestions for the upcoming episode will be accepted till the 24th of this month. India has declared one day national mourning today as a mark of respect for Father Amir of Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, who passed away yesterday. The national flag will be flown at half-mast on the day of mourning throughout India on all buildings where the national flag is flown regularly. There will be no official entertainment on the day. Prime Minister Narendra Modi has expressed condolences at the demise of Father Amir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, noting that he was a visionary leader who led Qatar to great levels of development and prosperity. External Affairs Ministry said in a statement that Parliamentary Affairs and Minority Affairs Minister Kiran Rijiju is visiting Qatar to convey condolences on behalf of the Government of India to the State of Qatar. Five Indian students have won gold medals at the 56th International Physics Olympiad 2026, which was held at Bucaramanga in Colombia from the 4th to 12th of this month. These young physicists have brought immense pride to the nation by delivering an extraordinary performance. In tennis, top seed Italy's Yannick Sinner claimed the Wimbledon men's singles title by defeating second seed Germany's Alexander Zverev. Sinner also earned his 100th Grand Slam match win, and he is the only Italian man who has reached the milestone. And that is the end of this news bulletin.

नमस्कार, सुप्रभात। रात ने धीरे धीरे अपनी चादर समेट ली है और पूरब के आकाश पर सूरज की हल्की सी लालिमा दिखाई देने लगी है। हवा में एक नर्म सी ठंडक है। पेड़ों की पत्तियां जैसे कोई सुबह का संदेश बांट रही हैं। ऐसे ही मौसम में आपके साथ मैं जुड़ी हूं, आपकी अपनी अर्चना गोयल, और आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम भूर सुहानी, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बेहद खूबसूरत पॉजिटिव गीत के साथ।

दोस्तों, सुबह और संगीत का रिश्ता भी कितना खूबसूरत होता है। एक अच्छा गीत जब सुबह सुबह कानों में पड़ता है तो लगता है जैसे मन की खिड़कियां खुल गई हों और ताज़ी हवा सीधे दिल तक पहुंच रही हो। वैसे सुबह हमें बहुत कुछ सिखाती है। कल चाहे दिन कैसा भी रहा हो, सूरज ये कभी नहीं कहता कि कल बादल थे इसलिए आज मैं नहीं निकलूँगा। वो हर दिन आता है अपने पूरे उजाले के साथ।

0: rima risa, rima panisa, rima panisa, rima panisa.
1: शायद जिंदगी का सबसे बड़ा संदेश है बीता हुआ कल हमारे आज के उजाले को कम नहीं कर सकता। साथियों, अगर कल कोई बात मन के मुताबिक नहीं हुई, कोई काम अधूरा रह गया या किसी की बात ने मन को उदास कर दिया, तो उसे आज की सुबह पर हावी मत होने दीजिए। आज नया दिन, नई शुरुआत है।